पढ़े सुने क्या होई, जाओ सहज ना मिलो सोई। हर का नाम ना जपस गवारा, क्या सोच है बारंबारा। रहाओ अंधियारे दीपक चाहिया, एक बस्त अगोचर लहिया। बस्त अगोचर पाई,

मन माने लोग ना पतिज ना पतिज तो क्या कीज कह कबीर अब जानिया जब जानिया तो मन मानिया मन माने लोग ना पतिज ना पतिज तो क्या कीज। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। क्या पढ़ी है क्या गुणी है क्या वेद पुराना सुनिया पढ़े सुने क्या होई जाओ सहज ना मिलो सोई। 655 अंग। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

ताके अंत न पाए जाहे। एओ अंत न जाने कोए बहुता कहिए बहुता होए। वड्डा साहिब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। एवड ऊंचा होवे कोए तिसे ऊंचे को जाने सोए। जेवड आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात। बहुता करम लिखिया न जाए वड्डा दाता तिल न तमाए।

हैं, आजाद हैं, अजन्म हैं, अवर्ण हैं, अभूत हैं, अपर्ण हैं, अगंज हैं, अपंज हैं, अचूज हैं, अचंज हैं, अमीक हैं, रफीक हैं, अतंद हैं, अबंध हैं, निर्बूज हैं, असूज हैं, अकाल हैं, अजाल हैं, अलाह हैं, अजाह हैं, अनंत हैं, महंत हैं, अलीक हैं, निरसरीक हैं, निर्लंब हैं, असंभ हैं, अगम हैं, अजम हैं, अभूत हैं, अछूत हैं, अलोक हैं, अशोक हैं, अकर्म हैं, अपर्म हैं,

समस्तो पराजी समस्त धाम तेरा जोर चाचरी छंद। जल है थल है अपीत है अपे है प्रभु है अजू है आदेश है अपेश है पुजंग पर्यात चंद। अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्व माने समस्ति निधाने। नमस्तवंग नरनाथे नमस्तवंग परमाथे नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग अपंजे नमस्तवंग अका

चरपट छंद तह पुरुषार अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्म अलख कर्म सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्व सर्वंग माने सर्वंग प्राण सर्वंग त्राण सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवं सर्वंग पीवं सर्वंग काले सर्वंग पाले रुआल छंद तै प्रसाद आद रूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार सर्व मान तिर मान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल जतर ततर विराज ही अवतूत रूप साल

गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमी के अनुस्तत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व कौ प्रत पार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र ना जान नहीं जाय रूप रंग और रेख परम वेद पुराण जाके नेत पाखत नित कोट सिमरत पुराण शास्त्र न आवे वो चित मद पार शांत है प्रसाद गुण गण उदा

तिरंगी अनामे तिरपंगी तिरकामे तिर बरगंग तिर बादे अगंजे अगाते सुभंग सर्भागे सुसर्भ अनुरागे।

अन उक्त स्वरूप है पर जुगत अनूप है चाचरी छंद। अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजे है अभे है अपूत है अतूत है अनाश है उदास है अतंध है अबंध है अपगत।

तराणंग सर्वंग कर्मंग सर्वंग धर्मंग सर्वंग जुगता सर्वंग मुक्ता रसावल संत तै प्रसाद नमो नरक नासे सदेवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते।

समस्तुल अजीज है, परम परम ईश है समस्तुल अदीश है, अदेशुल अलेख है हमेशुल अपीक है, जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है, क्रीमुल कमाल है के जुर्त जमाल है के अचल

गुण गण मुदाम अर बर अगंज हर नर पर भंज अन गन पुर नाम मुन मन सलाम हर नर खंड बर नर अमंड अन भव अनास मुन मन प्रकाश गुण गण पुर नाम जल थल मुदाम।

अमृत अमृत है, करुणा कृत है, अकृत अकृत है, धरणी तृत है, अमितेश्वर है, परमेश्वर है, अकृत अकृत है, अमृत अमृत है, अजवाकृत है, अमृत अमृत है, नर नायक है, खल कायिक है, विसंपर है, करुणालय है, नृप नायक है, सर्व पायक है, भव पंजन है, अर्गंजन है, रिप तापन है, जप जापन है।

अपंगी सरूपे अनंगी अनामे तिरपंगी तिरकाले अनंगी अकामे ए कचरी चंद आजे अले अपे अबे अपू अजू अनास आकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजूनी अमूनी नरागे नरंगे नरूपे नारेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेख पुजंग पर्यात चंद नमस्त अल परनामे समस्त अल परनास से अगंजल अनामे समस्थल निवास से निरकामिंग बपूते समसल स्वरूपे को करुणंग परनासी सो धर्मंग बिपूते सदा सचदानंद सतरंग परनासी क्री मुल्क निंदा समसल निवासी अजैब बिभूते गजैब गनी में हरियं करियं क्री मुल रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भोगते सुवम सर्व सर्वदा।

करना अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनहो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किछ है जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटा हो जिस दिया एह वडे आईया कह नानक सुनहो संत हो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन काओ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ तित घर अनहद वाजे

सुने सरा गुणा के गा सुने से पीर पाशा सुने अंदे पावे राहो सुने हाथो बेस गाहो नानक पत्ता सदा विगास सुने दूपा का नास मने की गत कहीं ना जाए जे को कहे पिछे पछताए कागत कलम ना लिखनहार मने काबे करन विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन सुरत होवे मन बुद्ध मन सगल पवन की सुध मन मोह चोटा न खाए मन जम के साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन मार्ग ठाक न पाए मन पास्यो प्रगट जाए मन मगन चले पंथ मन धर्म से संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन पावे मोख द्वार मन परवारे साधार मन तरे तारे गुरसिख मन नानक पवे न पिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगह मान पंचे सो है दर्रा जान पंचा का गुरेक ध्यान जे को कहे करे विचार करते कै करने नाही सुमार तौल तरम दया का पूत संतोख था परख्या जिन सूत जे को बुझै होवे सचार तवले उपर किता पार तरती होर परे होर होर तिस्ते पार तले कवन जोर जी जा तिरंगा के नाम समना लिखा बुढ़ी कलाम एह लिखा लिख जाने कोए लिखा लिखा केता होए केता तान सुअले रूप केती दा जाने कौन कूत कीता पसाओ इको कपाओ तिस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारन जावा एक बार जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप संघ पाओ संघ पूजा संघ तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ संघ जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूरम पक्षार संघ मोन लिव लाए तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक बार जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड़त्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पखाहे असंख निंद सर करे पार नानक नीच कहे विचार वारन जावा एक बार जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख सिर पार होए अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुणगाह अखरी लिखन बोलन बाण।

मन किता पाओ अंतरगत तीरथ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोय विन गुण कीते भगत ना होए स्वाथात बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवन सुवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन से रुति माह कवन जित होआ आकार वेल न पाइया पंडती जे होवे लिख प्राण वक्त न पायो कादिया जे लिखन ले कुरान थित बार ना जोगी जाने रुतमा ना कोई जा करता सिर ठीको साजे आपे जाने सोई किव का रखा कि सलाहे क्यों वर्णी किव जाना नानक आखण सबको आख है एक दू एक सियाणा वड्डा साहे वड्डी नाई कीता जाका होवे नानक जे को आपो जाने अगे गया ना सो है पाताल ना पाताल लख आगास आगास ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहने एक बात सह सठारा कहन कते बास लुक तात लिखा होए ता लिखी है लिखे होए बिनास नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप साला ही इति सुरत न पाईया नदियां ते वापवे समुंद ना जानी है सुमंद सा सुल्तान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुल न होवनी जे तुस मनो ना विसरै अंत न सिफती करना अंत अंत न करने देना अंत अंत न वेखण सुनन अनंत अंत न जप

जैसे रैन प्राहुणे उठ जल सह प्रभात, क्या तू रत्ता ग्रस्त स्यो सब फुल्ला की बागात। मेरी मेरी क्या करह जिन दिया सो प्रभ लोड, सर पर उठी चलना छड़ जासी।

साधु संगत मन वसै पूर्ण होवे काल रहाओ। गुर समर्थ अपार गुर बड़भागी दर्शन होए, गुर अगोचर निर्मला गुर जेवड़ अवर ना कोए। गुर करता गुर करण हार गुरमुख सच्ची सोए, गुर ते बाहर किश नहीं गुर कीता लोड़े सो होए। गुर तीर्थ गुर पार जात गुर मनसा पूर्ण हार, गुर दाता हर नाम दे उदर सब संसार। गुर समर्थ गुर निरंकार गुर ऊंचा अगम अपार, गुर की महिमा अगम है क्या कथे कथन हार। जितड़े फल मन बाची यह तितड़े सतगुर पास, पूर्व लिखे पावने साच नाम दे रास। सतगुर सरणी आया बाहुड़ नहीं बिनास, हर नानक कदे न विसरो एहो जियो पिंड तेरा सास। श्री राग महला पंजवा संत जन हो सुन भाई हो छूटन साचै नाए, गुर के चरण सरेवने तीर्थ हर का नाओ। आगे दर गह मनी यह मिले न था वे थाओ, भाई रे साची सतगुर सेव सतगुर तुठे पाई है पूरन अलख अपेव रहाओ। सतगुर विट हो वारिया जिन दिता सच नाओ, अंदन सच सलाहना सचे के गुण गाओ। सच खाना सच पहनना सचे सचा नाओ, सास गिरास न विसरे सफल मूरत गुर आप। गुर जीवड़ अवर न दिसाई आठ पहर तिस जाप, नदर करे ता पाईए सच नाम गुण तास। गुर परमेश्वर एक है सब मह रहे आस, माए जिन को पूर्व लिखिया सेई नाम त्याय। नानक गुर शरणागति मरे न आवे जाय, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्री राग महला पहला घर पहला अष्टपदिया। आख आख मन भावना ज्यो ज्यो जापै वाए, जिसनो वाए सुनाइए सो केवड़ कित थाए। आखण वाले जेत

सी गार गणत गणावन आईया सूहा वेस विकार पाखंड प्रेम ना पाईए खोटा पाज खुआर हर जियो यो पिर रावे नार तुद पावन सुहागनी अपनी कृपा लै हे सवार रहाओ गुरसबदी सिगारिया तन मन पिर कै पास दोय कर जोड़ खड़ी तकै सच कह अरदास लाल रती सच पह वसी पाए रती रंग रास प्रेय की चेरी कांडिय लाली मन नाओ साची प्रीत न तुटाई साचे मेल मिलाओ शब्द रती मन वेदया हो सदबलिहार जाओ सा तन रंड न वै सई जे सतगुर माहि समाए पिर रिसालू नौ तनो साचो मरै न जाए नित रवै सुहागणी साची नदर रजाए साज धड़ी तन माडीए कापड़ प्रेम सिगार चंदन चीत वसाया मंदर दसवा द्वार दीपक शब्द वे गासिया राम नाम उरहार नारी अंदर सोहनी मस्तक मणि प्यार शोभा सुरत सुहावनी साचे प्रेम अपार बिन पर पुरख न जानई साचे गुर कै हेत प्यार

बिन ना वैद दुख देहरी ज्यों कलर की पीत तब लग महल ना पाइये जब लग साज ना चीत शब्द रपे कर पाइये निर्बाणी पद नीत हो गुर पूछव अपने गुर पुछकार कमाओ शब्द सलाही मन वसै होमै दुख जल जाओ सहज होए मिलावड़ा साचे साच मिलाओ शब्द रते से निर्मले तज काम क्रोध अहंकार नाम सलाहन सद सदा हर राख है उर तहार सो क्यों मनो विसारी है सब जिया का आधार शब्द मरे सो मर रहे फिर मरे न दूजी वार शब्द ही ते पाइये हर नामी लगे प्यार बिन शब्द जग भूला फिर मर जन्मे वारो वार सब साला है आपको वडो वडेरी होए गुरबिन आप न चीनिए कहे सुने क्या होए नानक शब्द पछाणिए हो मैं करे ना कोय श्री राग महला पहला बिन पर तन सिगारिए जोवन बाद खुआर ना माने सुख सेजड़ी बिन पर बाद सिगार दुख कणो दोहा गणी ना कर सेज पतहार मन रे राम जप हो सुख होए बिन गुर प्रेम ना पाइए शब्द मिले रंग होए रहाओ गुर सेवा सुख पाइये हर वर सहज सिगार सच माने पर से जड़ी गूढ़ा हित प्यार गुरमुख जान सियाणी गुर मेली गुण चार सच मिलहो वर कामणी पिर मोही रंग लाए मंत्र साच विगसिया कीमत कहन ना जाए हर वर कर सुहागणी निर्मल सच नाए मन में मनुआ जे मरे ता पिर रावे नार इक तागे रल मिले गल मोतियन का हार संत सभा सुख उपजे गुरमुख नाम आधार खिन मह उपजे खिन खपै खिन आवे खिन जाए शब्द पछाणे रव रहे ना तिस काल संताए साहिब अतुल न तोलिए कथन न पाया जाए व्यापारी बन जा रिया आए वजहो लिखाए कारक मावे सच की लाह मिले रजाए पूंजी साची गुर मिले ना तिस तिल ना तमाए गुरमुख तोल तो लाए सी सच तराजी तोल आसा मनसा मोहनी गुर ठाकी सच बोल आप तुलाए तोल सी पूरे पूरा तोल कथन है कहन न छुटिए ना पढ़ पुस्तक पार काया सोच न पाइये बिन हर भगत प्यार नानक नाम न विसरै मिले गुर करतार श्री राग महला पहला सतगुर पूरा जे मिले पाइये रतन विचार मन दी जय गुर अपने पाइये सर्ब प्यार मुक्त पदार्थ पाइये अवगण मिटन हार भाई रे गुर बिन ज्ञान न होए पूछो ब्रह्मे नारद वेद व्यास कोए रहाओ ज्ञान ध्यान तुन जानिए अकथ कहावे सोए सफलो बिरख हरियावला शाव कनेरी होए लाल जवे हर मान की गुर भंडारे सोए गुर भंडारे पाइये निर्मल नाम प्यार साचो वखर संचिए पूरे कर्म अपार सुखदाता दुख मिटनो सतगुर असुर संघार पवजल विखम डरावनो ना कंदी ना पार ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना तिस वंज मलार सतगुर भय का बोह था नदरी पार उतार एक दिल प्यारा विसरै दुख लागे सुख जाए जिहबा जलो जलावनी नाम ना जपै रसाए घट बिन सै दुख अगलो जम

जियो मित्रा हर नाम जपत परगासो सिमर स्वामी सुखह गामी एच सगली पुनिया पुरब कमाए श्री रंग पाए हर मिले चिरी विशुनिया अंतर बाहर सर्बत रव्या मन उपजया विश्वासो नानक सिख दे मन प्रीतम कर संता संग निवासो मन प्यारिया जियो मित्रा हर प्रेम भगत मन लीना मन प्यारिया जियो मित्रा हर जल मिल जीवे मीना हर पिया गाने अमृत बाने सर्ब सुखा मन बुठे श्री दर पाए मंगल गाए इच पुनी सतगुर तुठे लड़ लीने लाए नौ निध पाए नाउ सर्बस ठाकुर दीना नानक सिख संत समझाई हर प्रेम भगत मन लीना श्री राग के चंत महला पंजवां।

ना जाए। जे को मुंह उपदेश करत है ता वण त्रिण रत्रड़ा नारायण। ऐ जी तू आपे सब कुछ जानदा, बदत त्रिलोचन रामैया। श्री राग भगत कबीर जियो का अचरज एक सुनोरे।

0: ਦੇ ਦੇ ਨੀਵਨ ਵਾਲੋ ਸਾਰੀ ਪਸਮੰਦਰ ਕੀ ਟੇਰੀ ਸੰਚੇ ਸੰਚ ਨਾ ਦੇਈ ਕਿਸੀ ਅੰਤ ਜਾਣੇ ਸਭ ਮੇਰੀ ਸੋਇਨ ਲੰਕਾ ਸੋਇਨ ਮਾੜੀ ਸੰਪੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੇਰੀ ਸੁਣ ਮੂਰਖ ਮਾਨਾ ਜਾਣਾ ਹੋਗ ਤੁਸੇ ਕਪਾਣਾ ਰਹਾਓ ਸਾਹੋ ਹਮਾਰਾ ਠਾਕਰ ਭਾਰਾ ਹਮ ਤਿਸਕੇ ਵਣਜਾਰੇ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਰਾਤ ਸੇ ਕੀ ਮਾਰ ਆਪੇ ਜੀ ਵਾਲੇ ਗੌੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਔਰ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖੋ ਘਰ ਬਾਰ ਮਨਾ ਮਾਰੈ ਲੁੱਟੈ ਨੀਤ ਨੀਤ ਕਿਸ ਆਗੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਨਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰ ਮਨਾ ਆਗੇ ਜਾਮ ਦਲ ਬਿਖਮ ਕਨਾ ਰਹਾਓ ਉਸਾਰ ਮੜੋਲੀ ਰਾਖੇ ਦੁਆਰਾ ਭੀਤਰ ਬੈਠੀ ਸਾਤਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇਲ ਕਰੇ ਨਿਤ ਕਾਮਣ ਔਰ ਉਲਟੇਨ ਸੋ ਪੰਚ ਜਨਾ ਢਾਹੇ ਮੜੋਲੀ ਲੁੱਟਿਆ ਦੇਹੁਰਾ ਸਾਤਨ ਪਕੜੀ ਏਕ ਜਨਾ ਜਾਮ ਡੰਡਾ ਗਲ ਸੰਗਲ ਪੜਿਆ ਭਾਗ ਗਏ ਸੇ ਪੰਚ ਜਨਾ ਕਾਮਣ ਲੋੜੇ ਸੋਨਾ ਰੁਪਾ ਮਿੱਤਰ ਲੋੜੇ ਇਨ ਸੁਖਾ ਦਾਤਾ ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਜਾਸੀ ਜੰਪੁਰ ਬਾ ਦਾਤਾ ਗੋਲੀ ਚੀਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੰਦਰਾ ਤੇ ਘੱਟ ਪਿੱਤਰ ਮੁੰਦਰਾ ਕਾਇਆ ਕੀ ਜੇ ਖਿੰਤਾ ਤਾ ਪੰਚ ਚੇਲੇ ਵਸ ਕੀ ਜੇ ਰਾਵਲ ਇਹੋ ਮੰਨ ਕੀ ਜੇ ਡੰਡਾ ਤਾ ਜੋਗ ਜੋਗ ਤੇ ਉਪਾਵਸਤਾ ਇੱਕ ਸਭ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਨਾਸਤ ਕੰਦ ਮੂਲ ਮਨ ਲਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹਾਓ ਮੂਨ ਵੰਡਾਇ ਜੇ ਗੁਰ ਪਾਈਏ ਹਾਮ ਗੁਰ ਕੀ ਨੀ ਗੰਗਾਤਾ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਏਕ ਨਚੇਤ ਅੰਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਧਾਰਨ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਏਕ ਨਾ ਚੇਤਸ ਅੰਦਾਤਾ ਕੁਆਰ ਕੁਟੰਬ ਗੱਲੀ ਮਨ ਲਾਵਸ ਸੰਸਾ ਮੂਲ ਨਾ ਜਾਵਸਤਾ ਏਕ ਸਚਰਨੀ ਜੇ ਚਿੱਤ ਲਾਵੈ ਲਾਭ ਲੋਕ ਕੀ ਧਾਵਸਤਾ ਜਪਸ ਨਿਰੰਜਨ ਰਚਸ ਮਨਾ ਜਪਸ ਨਿਰੰਜਨ ਰਚਸ ਮਨਾ ਕਾਹੇ ਬੋਲੇ ਜੋਗੀ ਕਪਟ ਕਨਾ ਰਹੋ ਕਾਇਆ ਕਮਲੀ ਹੰਸ ਏਣਾ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰ ਬਿਹਾਣੀਤਾ ਪ੍ਰਣਤ ਨਾਨਕ ਨਾਂਗੀ ਦਾਂਜੈ ਫਿਰ ਪਾਛੇ ਪੁਸ਼ਤਾਣੀਤਾ ਗੌੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਔਖਦ ਮੰਤਰ ਮੂਲ ਮਨ ਏਕੈ ਜੇ ਕਰ ਦ੍ਰਿੜ ਚਿੱਤ ਕੀਜੈ ਰੇ ਔਖਦ ਮੰਤਰ ਮੂਲ ਮਨ ਏਕੈ ਜੇ ਕਰ ਦ੍ਰਿੜ ਚਿੱਤ ਕੀਜੈ ਰੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੇ ਕੱਟਣ ਹਾਰਾ ਲੀਜੈ ਰੇ ਮਨ ਏਕੋ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰੇ ਤੇਰੇ ਤੀਨ ਗੁਣਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਵੈ ਲੱਖਣਾ ਲੱਖਣਾ ਜਾਈ ਰੇ ਰਹਾਉ ਸੱਕਰ ਖੰਡ ਮਾਇਆ ਤਨ ਮਿੱਠੀ ਹਮ ਤੋਂ ਪੰਡ ਉਚਾਈ ਰੇ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਸੂਜ ਸੁਨਾਈ ਲੱਜ ਟੂਕ ਸਮੂਸਾ ਭਾਈ ਰੇ ਮਾਨਮੁਖ ਕਰੇ ਤੇਤਾ ਦੁੱਖ ਲਾਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੇ ਵਡਾਈ ਰੇ ਜੋ ਤਿਨ ਕੀਆ ਸੋਈ ਹੋਆ ਕਿਰਤ ਨਾ ਮਿਟਿਆ ਜਾਈ ਰੇ ਸੁਭਰ ਭਰੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਸੁਭਰ ਭਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਊਣੇ ਜੋ ਰਾਤੇ ਰੰਗ ਲਾਈ ਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਪੰਕ ਹੋਵੇ ਜੇ ਨਾਨਕ ਤੋ ਮੂੜਾ ਕਿਛ ਪਾਈ ਰੇ ਗੌੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਤਕੀ ਮਾਈ ਬਾਤ ਬਾਪ ਕਤ ਕੀਰਾ ਕਿੱਦੂ ਥਾਂ ਮੂੰਹ ਮਾਏ ਅਗਨ ਬਿੰਬ ਜਲ ਭੀਤਰ ਉਪਜੇ ਕਾਹੇ ਕੰਮ ਉਪਾਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕਹੇ ਨਾ ਜਾਣੀ ਔਗਣ ਮੇਰੇ ਰਹਾਓ ਕੇਤੇ ਰੁੱਖ ਬਿਰਖ ਹਮ ਚੀਨੇ ਕੇਤੇ ਪਸ਼ੂ ਉਪਾਏ ਕੇਤੇ ਨਾਗ ਕੁਲੀ ਮੈਂ ਆਏ ਕੇਤੇ ਪੰਖ ਉਡਾਏ ਹੱਟ ਪੱਟਣ ਬਿਜ ਮੰਦਰ ਭੰਨੈ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਘਰ ਆਵੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੈ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖੈ ਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾਂ ਛਪਾਵੇ ਤਟ ਤੀਰਥ ਹਮ ਨਵ ਖੰਡ ਦੇਖੇ ਹੱਟ ਪੱਟਣ ਬਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੱਕੜੀ ਤੋਲਣ ਲਾਗਾ ਘੱਟ ਹੀ ਮੈਂ ਵਣਜਾਰਾ ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ ਦਇਆ ਕਰਹੋ ਕਿਸ਼ ਮੇਰ ਪਾਵ ਹੋ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ ਜੀੜਾ ਅਗਨ ਬਰਾਬਰ ਤਪੈ ਭੀਤਰ ਵਗੈ ਕਾਤੀ ਪ੍ਰਵਣਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਹੈ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੌੜੀ ਬਿਰਾਗਣ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਹਿਣ ਗੁਆਈ ਸੋਏ ਕਹਿ ਦਿਵਸ ਗੁਆਇਆ ਖਾਏ ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਰਾਮ ਕਾ ਮੂੜੇ ਫਿਰ ਪਾਛੇ ਪੁਛਤਾ ਹੇ ਰੇ ਰਹਾਓ ਅੰਤਾ ਧਨ ਧਰਨੀ ਧਰੇ ਅੰਤ ਨਾ ਚਾਹਿਆ ਜਾਏ ਅੰਤ ਕੋ ਚਾਹਨ ਜੋ ਗਏ ਸੇ ਆਏ ਅੰਤ ਗਵਾਏ ਆਪਣ ਲਈ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਭਾਗਟ ਹੋਏ ਆਪਣ ਲਈ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਭਾਗਠ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਬੜੇ ਜੇ ਲੋਚੇ ਸਭ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਸੋਈ ਸਾਰ ਕਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਪੀ ਖਸਮ ਕਾ ਕਿਸੇ ਵਡਾਈ ਦੇ ਗੌੜੀ ਬਿਰਾਗਣ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਰਨੀ ਹੋਵਾਂ ਬਨ ਬਸਾਂ ਕੰਧ ਮੂਲ ਚੁਣ ਖਾਓ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮੇਰਾ ਸੌ ਮਿਲਿਆ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਉ ਜਾਓ ਜੀਓ ਮੈਂ ਪਨਜਾਨ ਰਾਮ ਕੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੱਖਰ ਵਾਹ ਪਾਰ ਜੀ ਰਹਾਓ ਕੋਕਿਲ ਹੋਵਾਂ ਅੰਬ ਬਸਾਂ ਸਹਿਜ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਮੇਰਾ ਸੌ ਮਿਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਮਛਲੀ ਹੋਵਾਂ ਜਲ ਬਸਾਂ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸਾਰ ਉਰਵਾਰ ਉਰਵਾਰ ਪਾਰ ਮੇਰਾ ਸੌ ਵਸੇ ਹੋ ਮਿਲੋਂਗੀ ਬਾਂਹ ਪਸਾਰ ਨਾਗਨ ਹੋਵਾਂ ਧਰ ਵਸਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਸੇ ਭਉ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਗੌੜੀ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਦੀਪ ਕੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੈ ਘਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਐ करते का होए विचारो तैत घर गावो सोहिला सिवरो सिरजन हारो तुम गावो मेरे निरभौ का सोहिला हों वारी जाओ जित सोहले सदा सुख होई रहाओ नित नित जीड़े संभालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दाते कौन सुमार संबत साहा लिखिया मिल कर पावो तेल देहो सजन सीसड़ियाँ देहो सजन आ सीसड़ियाँ ज्यो होवे साहिब सो मेल घर घर एहो पाहुचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिया नानक से दे आवन रा गोड़ी गोरी महला तीजा चौप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर मिलिया हर मेला होई आपे मेल मिलावे सोई मेरा प्रभ सब बिद आपे जाने हुक्मे मेले शब्द पछाने सतगुर के भय भ्रम भौ जाए भय राचै सच रंग समाए रहाओ गुर मिलिया हर मन वसै सुभाए मेरा प्रभ भारा कीमत नहीं पाए सब सलाहे अंतना पारा वार मेरा प्रभ बख्शे बख्शनहार गुर मिलिया सब मत बुद्ध होए मन निर्मल वसै सच सोए साच वसै साची सबकार उत्तम करनी शब्द विचार गुर ते साची सेवा होए गुरमुख नाम पछाणे कोई जीवे दाता देवनहार नानक हर नामे लगे प्यार गौड़ी गौरेरी महला तीजा गुरते ज्ञान पाए जन कोए गुरते ज्ञान पाए जन कोए गुरते बूझे सीजे सोए गुरते सहज साच विचार गुरते पाए मुक्त द्वार पूरे भाग मिले गुराए साचे सहज साच समाए रहाओ गुर मिलिया तृष्णा अग्न बुझाए गुरते सांत वसे मनाए गुरते पुत पावन सुच हुए गुरते शब्द मिलावा होए बाज गुरु सब भरम भुलाई बिनावे बहुता दुख पाई गुरमुख होवे सो नाम ते आई दर्शन सचे सची पत होई किसनो कहिए दाता एक सोई गुरमुख होवे सो नाम ते आई दर्शन सचे सची पात होई किसनों कहिए दाता एक सोई कृपा करे शब्द मिलावा होई मिल प्रीतम साचे गुण गावा नानक साचे साच समावा गौड़ी गौरेरी महला तीजा सो थाओ सच मन निर्मल होई सच निवास करे सच सोए सची बाणी जुग चारे जापे सब किश साचा आपे आपै कर्म होवे सत्संग मिलाए हर गुण गावे बै सो थाए रहाओ जलो एहो जेहवा दूजे पाए हर रसना चाखै फीका आलाए बिन बूझे तन मन फीका होए बिन नावै दुखिया चलिया रोए रसना हारा से चाख्या सहज सुभाए गुर कृपा ते सच समाए साचे राती गुर शब्द विचार अमृत पीवै निर्मल धार नाम समावे सो भांडा होए उंदे भांडे टिके ना कोई गुर शब्दी मन नाम निवास नानक सच भांडा जिस शब्द प्यास नानक सच भांडा जिस शब्द प्यास गौड़ी गौरेरी महला तीजा एक गावत रहे मान साधना पाए होमे विच गावे बिरथा जाए गावन गावे जिन नाम प्यार साची बाणी शब्द विचार गावत रहे जे सतगुर पावे मन तन राता नाम सुहावे रहाओ एक गावे एक भगत करे नाम ना पावे बिन असने सची भगत गुर शब्द प्यार अपना पेर राख्या सदा उर धार भगत करे मूर्ख आप जनावै नच नच टपे बहुत दुख पावे नचिया टपे भगत ना होए शब्द मरै भगत पाए जन सोए भगत वछल भगत कराए सोए सची भगत विचों आप खोए मेरा प्रभ साचा सब जाने नानक बख्शे नाम पछाणे गौड़ी गुरेरी महला तीजा मन मारे धात मर जाए बिन मुए कैसे हार पाए मन मरै दारू जाने कोए मन शब्द मरै बूझे जन सोए जिसनो बख्शे दे वड्याई गुरप्रसाद हर वसे मन आई रहाओ गुरमुख कर नीकार कमावे ता इस मन की सोझी पावे मन मैं मत मैगल मिकदारा गुर अंक समार जिवालन हारा मन असाध साधे जन कोए अचार चरै ता निर्मल होए गुरमुख एहो मन लया सवार होमे विचों तजे विकार जो तुर राखेन मेल मिलाए कदे न विछड़े शब्द समाए अपनी कला आपे ही जाने नानक गुरमुख नाम पछाणे गौड़ी गुरेरी महला तीजा होमे विच सब जग पुराना दूजे भाए भरम भुलाना बहुत चिंता चितवे आप ना पछाना धंधा करत्या अन दिन विहाना हिरदे राम रमो मेरे भाई गुरमुख रसन हर रसन रसाई रहाओ गुरमुख हिरदे जिन राम पछाता जग जीवन सेव जुग चारे जाता होमे मार गुर शब्द पछाता कृपा करे प्रभ कर्म विधाता से जन सचे जो गुर शब्द मिलाए तावत वरजे ठाक रहाए नाम नाम निद गुरते पाए हर कृपा ते हर वसे मन आए राम राम करत्या सुख सांत शरीर अंतर वसे ना लागे जम पीर आपे साहेब आप वजीर नानक सेव सदा हर गुणी गहीर गौड़ी गौरी माला तीजा सो क्यों विसरै जिसके जी पुराना सो क्यों विसरै सब माहे समाना जित सेवै दर गै पत परवाना हर के नाम विटों बल जाओ तू विसरै तद ही मर जाओ रहाओ तिन तू विसरे जे तुद आप भुलाए तिन तू विसरे जे दूजे पाए मनमुख अज्ञानी जोनी पाए जिन एक मन तुठा से सतगुर सेवा लाए जिन एक मन तुठा तिन हर मन वसाए गुरमती हर नाम समाए जिन्ना पोते पुन से ज्ञान बिचारी जिन्ना पोते पुन तिन होमे मारी नानक जो नाम रते तिन कौ बलहारी गौड़ी गौरी महला तीजा तू अकथ क्यों कथिया जाए गुर शब्द मारण मन माहे समाए तेरे गुण अनेक कीमत न पाए जिस की बाणी तिस माहे समाणी तेरी अकथ कथा गुर शब्द बखानी रहो जय सतगुर तै सतसंगत बनाई जह सतगुर सहजे हर गुण गाई जह सतगुर तहां होमे शब्द जलाई सतगुर सेवा मैली थाऊं पाए गुरमुख अंतर हर नाम वसाए गुरमुख भगत हर नाम समाए आपे दात करे दाता पूरे सतगुर सुन लगे प्यार नानक नाम रते तिनको जयकार गौड़ी गुरारी मार लाती जा एक स्ते सब रूप है रंगा पौन पानी बेसंतर सब सहलंगा भिन्न भिन्न वेखे हर प्रभ रंगा एक एक आचार्य एको है सोई गुरमुख विचारे विरला कोई रहाओ सहज भवे प्रभ सबनी थाई कहां गुप्त प्रगट प्रभ बंत बनाई आपे सुत्यां दे जगाई तिसकी कीमत किने न होई कह कह कथन कहे सब कोई गुर शब्द समावे बूझे हर सोई सुन सुन वेखे शब्द मिलाए वड्डी वड्याई गुर सेवा ते पाए नानक नाम रते हर नाम समाए गौड़ी गौरी महला तीजा मनमुख सूता माया मोहे प्यार गुरमुख जागे गुर ज्ञान बीचार से जन जागे जिन नाम प्यार सजे जागे सवे न कोए पूरे गुरते बूझे जन कोए रहाओ असंत नाड़ी कदे न बूझे कथनी करे ते माया नाल लूजे अंध ज्ञानी कदे न सीजे ऐसे जोग में राम नाम निस्तारा विरला को पाए गुर शब्द विचारा आप तरे सगले कोल उधारा इस कलयुग में कर्म धर्म न कोई कली का जन्म चिंडाल के कर होई नानक नाम बिना को मुक्त ना हुई गौड़ी महला तीजा गुरेरी सच्चा अमर सच्चा पातशाह मन साचे रात हर वे प्रवाओ सच्चे महल सच नाम समाहो सुन मन मेरे शब्द विचार राम जपो भाव जल उतरो पार रहाओ भरमें आवे भरमें जाए एहो जग जन्मया दूजे पाए मनमुख ना चेते आवे जाए आप भुला के प्रभ आप भुलाया एहो जीव बनाणी चाकरी लाया महा दुख खटे बिरथा जन्म गवाया कृपा कर सतगुरु मिलाए एको नाम चेते विचों भरम चुकाए नानक नाम जपे नाओ नौ निध पाए गौड़ी गुरारी मला तीजा जिन्ना गुरमुख त्याया तिन पुछो जाए गुरसेवा ते मन पतियाए से धनवंत हर नाम कमाए पूरे गुरते सोझी पाए हर हर नाम जपो मेरे भाई गुरमुख सेवा हर काल थाई पाई रहाओ आप पछाणे मन निर्मल होए जीवन मुक्त हर पावे सोए हर गुण गावे मत उत्तम होए सहजे सहज समावे सोए दूजे पाए न सेवै जाए हम माया महा बेख खाए पुत कुटुंब ग्रह मोया माए मन मुखंदा आवे जाए हर हर नाम देवे जन सोए आन दिन भगत गुर शब्दी होए गुरमत विरला बूझे कोए नानक नाम समावे सोए गौड़ी गुरारी महला तीजा गुर सेवा जुग चारे हुए पूरा जान कार कमावे कोई अखोट नाम धन हर तोट न होई इत्थे सदा सुख दर शोभा होई ए मन मेरे भरम ना कीजा गुरमुख सेवा अमृत रस पीजे रहाओ सतगुर सेवे से महापुरख संसारे आप उधरे कोल सगल निसतारे हर का नाम रखे और तारे नाम रते भौजल उतरे पारे सतगुर सेवे सदा मंदासा होमे मार कमल प्रगासा आन हद वाजे नित घर वासा आन हद वाजे निज घर वासा नाम रते घर माहे उदासा सतगुर सेवे तिन की सच्ची बाणी जुग जुग भक्ति आग बखाणी आन दिन जप हर सारंग पाणी नानक नाम रते नेह केवल निर्बाणी गौड़ी गौरी महला तीजा सतगुर मिले वड भाग संयोग हृदय नाम नित हरस भोग गुरख प्राणी नाम हर त्याय जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ ज्ञान ध्यान गुर शब्द है मीठा गुर कृपा ते किने बिरले चख डीठा कर्म कांड बहु करे अचार बिनावे त्रिग त्रिग अहंकार बंधन बाध्यो माया फास जन नानक छूटे गुर परगास महला तीजा गौड़ी बैरागण जैसी धरती उपर मेघरा बसत है क्या धरती मदे पानी नाही जैसे धरती मधे पानी प्रगासिया बिन पगां वर्ग सत फिराही। बाबा तू ऐसे भरम चुकाही, जो किश करत है सोई कोई है, जो किश करत है सोई कोई है रे, तैसे जाए समाही रहाओ। स्त्री पुरख होए कह क्या होए कर्म कमाही, नाना रूप सदा है तेरे तुझी माहे समाही। इतने जन्म भूल परे से जा पाया ता भूले नाही, जा का कार्ज सोई पर जाने जे गुर के शब्द समाही। तेरा शब्द तू है आपे भरम कहां ही, नानक तत् तत् सो मिलिया पुनरप जन्म न आही। गौड़ी बैरागण महला तीजा, सब जग काले वस है वाधा दूजे पाए, होमें कर्म कमाम दे मन मुख मले सजाए। मेरे मन गुरचरणी चित लाए, गुरमुख नाम निधान लै दर गै लै छाई राओ। लख चौरासी भरम दे मन हटावे जाए, गुर का शब्द न चीन्यो फिर जोनी पाए। गुरमुख आप पछाणिया हर नाम वस्या मन आए, अंतिन भगती रत्या हर नामे सुख समाए। मान शब्द मरे प्रतीत होए, होमे तजे विकार जन नानक करमी पाई। इन हर नामा भगत भंडार, गौड़ी बैरागण महला तीजा। पीड़े दिन चार है हर हर लिख पाया, सुबह मंती नार है गुरमुख गाया। पिवकड़े गुण संभले सोहरे वास पाया, गुरमुख सहज समाणिया हर नाम मन पाया। ससरे पिए फिर वसै कहो कित बिद पाई, आप निरंजन लख है आपे मेला ये रहाओ। आपे ही प्रभ दे मत हर नाम त्याई, वड भागी सतगुर मिले मुख अमृत पाई। हो मैं तो दुधा बिन सजाए, सजे सुख समाइए। प्रभ आपे आप वरदा आपे नाए लाइए, मन मुख गर्भ ना पायो अगेआन ए आने। सतगुर से मनमुख गर्भ ना पायो अज्ञान ए आने। सतगुर सेवा ना करे फिर पछताने, गर्भ जोनी वास पाए दे गर्भे गल जाने। मेरे करते इवें पामदा मनुख परमाणे, मेरे हर पर लेख लिखाया तुरमस्तक पूरा। हर नाम त्याया पेटिया गुरसूरा, मेरा पिता माता हर नाम है हर बंध बीरा। हर हर बख्श मिलाए प्रभ जन नानक गुरसूरा। मेरा पिता माता हर नाम है हर बंध बीरा। हर हर बख्श मिलाए प्रभ जन नानक कीरा। गौड़ी बैरागण महला तीजा, सतगुरु ते ज्ञान पाया हर तत् विचारा। मत मिलीन प्रगट भई जप नाम मुरारा, सेव सकत मिटाइया चुके अंधेरा। तुर मस्तक जिनको लिखया तिन हर नाम प्यारा, हार कित बिद पाइए संत जनो जिस देख हो जीवा। हर बिन चसन जीवती गुर मेले हो, हर रस पीवा रहाऊं। हों हर गुण गावा नित हर सुनी, हर हर गत किनी। हर रस गुरते पाया मेरा मन तन तलीनी, धन धन गुर सतपुरख है जिन भगत हर दीनी। जिस गुरते हर पाया सो गुर हम कीनी, गुणदाता हर राय है हम अब गणियारे। पापी पाथर डूबते गुरमत हर तारे, तू गुणदाता निर्मला हम अब गणियारे। हर शरणागत राख ले हो मूढ़ मुक्त निस्तारे, सहज आनंद सदा गुरमती हर हर नाम त्याया। जन नानक मंगे धूड़ तिन जिन सतगुर पाया, गौड़ी गौरेरी महला चौथा। चौप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पंडित शास्त्र सिमरत पढ़िया, जोगी गोरख गोरख करिया, मैं मूर्ख हर हर जप पढ़िया। ना जाना कि आगत नम हमारी, हर पजमान मेरे तर पौजल तू तारी। रहाओ सन्यासी बभूत लाए देसवारी, पर त्रै त्राग करे ब्रह्मचारी। मैं मूर्ख हर आस तुम्हारी, खत्री कर्म करे सूरतन पावे, सूद वैस पर किरत कमावे। मैं मूर्ख हर नाम छिड़ावे, सब तेरी सृष्ट तू आप रह समाई। गुरमुख नानक दे वड्याई, मैं अंदले हर टेक टिकाई। गौड़ी गुरारी महला चौथा, निर्गुण कथा कथा है हर की, भज मिल साधु संगत जन की। तर भौजल अकथ कथा सुन हर की, गोबिंद सत्संगत मेल आए। हर अस रसना राम गुण गाए रहाओ, जो जन ध्यावे हर हर नामा। तैन दासन दास करो हम रामा, जन की सेवा उतुम कामा। जो हर की हर कथा सुनावे सो जन हमरे मन चित भावे। जन पग रेण वड भागी पावे, संत जना सो प्रीत बन आई। जिनको लिखत लिखिया तुर पाई, ते जन नानक नाम त्याई। गौड़ी गौरेरी महला चौथा, माता प्रीत करे
1: पुत खाए मन प्रीत पई। जलन नाए सतगुर प्रीत गुरसिख मुख पाए, ते हर जन हर मेलो हम प्यारे। जिन मिलिया दुख जाए हमारे रहो, ज्यों मिल बछरे गौ प्रीत लगावे। कम पीर जा पीर घरे आवे, हर जा पीर जा हर जस गावे। सारंग प्रीत बसै जल धारा, नरपत प्रीत माया देख पसारा। हर जन पीर जपे निरंकारा, नर प्राणी प्रीत माया धन खाटे। गुरसिख पीर गुरु मिले गलाटे, जय नानक पीर साध पग चाटे। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੀ ਦੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਭੀਖ ਪ੍ਰੀਤ ਭੀਖ ਪ੍ਰਪਾਈ, ਭੁੱਖੇ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਵੇ ਅਨਖਾਏ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰ ਮਿਲ ਅਗਾਏ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੁ ਹਰ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲੋਚ ਪੂਰ ਹਮਾਰੀ ਰਹਾਉ। ਚਾਕੇ ਪੀ ਸੂਰਜ ਮੁਖ ਲਾਗੈ, ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਤਿਆਗੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੀਤ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਲਾਗੈ। ਬਛਰੇ ਪੀਤ ਖੀਰ ਮੁਖ ਖਾਏ, ਹਿਰਦੇ ਵਿਕਸੇ ਦੇਖੇ ਮਾਏ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੀਤ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਲਾਏ। ਹੋਰ ਸਾ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਕਾਚਾ, ਬਿਨ ਜਾਏ ਕੂੜਾ ਕੱਚ ਪਾਚਾ, ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤ ਤ੍ਰਿਪਤ ਗੁਰ ਸਾਚਾ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇ ਦੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਜਿਤ ਹਰ ਨਾਮ ਜਿਤ ਮਿਲ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆ ਹਰ ਧਣੀ, ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਤਿਨ ਪਿਛੇ ਛੁੱਟੀ ਘਣੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਰ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਹਰ ਬੋਲ ਸਾ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਈ ਰਹਾਉ। ਜਬ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਤਬ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਧੌਤ ਪੰਚ ਰਹੇ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਆਂਦੇ ਨਗਰੀ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੱਗ ਧੂਰ ਜਿਨਾ ਮੁਖ ਲਾਈ, ਤਿੰਨ ਕੂੜ ਤੇ ਆਗੇ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਤੇ ਹਰ ਦਰ ਗਏ ਮੁਖ ਉਜਲ ਭਾਈ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਆਪ ਹਰ ਭਾਵੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਲ ਭਦਰ ਗੁਰ ਪੱਗ ਲਗ ਧਿਆਵੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਆਪ ਤਰਾਵੈ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇ ਦੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਆਪੇ ਜੋਗੀ ਡੰਡਾ ਧਾਰੀ, ਹਰ ਆਪੇ ਰਵ ਰਿਆ ਬਨਵਾਰੀ, ਹਰ ਆਪੇ ਤਪ ਤਾਪੈ ਲਾਏ ਤਾਰੀ, ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ, ਨਿਕਟ ਵਿਸੈ ਨਾਹੀ ਹਰ ਦੂਰ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਆਪੇ ਸਾਵ ਸੁਰ ਧੁਨ ਆਪੇ, ਹਰ ਆਪੇ ਵੇਖੇ ਵਿਕਸੈ ਆਪੇ, ਹਰ ਆਪ ਜਪਾਏ ਆਪੇ ਹਰ ਜਾਪੇ, ਹਰ ਆਪੇ ਸਾਰੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਪ ਪੀਆ ਬਣਹਾਰਾ, ਹਰ ਆਪ ਕਰੇ ਆਪੇ ਨੂੰ

रूप वंशो चतुर सियाणा जन जन मान्या प्रभु का पाणा जग में आया सो प्रवान कट कट सो अपना स्वामी जान कहो नानक जाके पूर्ण पागु।

पंजवा जन की तूर मन मीठ कटानी पूर्व कर्म लिखिया तुर प्राणी रहाउ आहू बुद्ध मन पूर तथाई सा तूर कर शुद्ध मंजाई अनकला जे धोवे देही मैं उतर शुद्ध न तेही सतगुर भेट्यो सदा कृपाल हर सिमर सिमर काट।

दरस धन मस्तक चरण कमल ही परस गोबिंद की टहल सफल इह काया संत प्रसाद परम पद पाया जनकी कीनी आप सहाय सुख पाया लग दास हे पाए आप अत आप हे पई कृपण दान की सरनी पै जो चाहत सोई जा पाया तब ढूंढन कहाँ को जाया स्तर पय बसे सुख आसन गुर प्रसाद नानक सुख बासन।

रस जन जन चाख्या ताकि तृष्णा लातिया हर विश्राम नित पाया सुबौर नकत ही ताया हर हर नाम जाको गुरु दिया नानक ताको पौ गया गौड़ी महला पंजवा।

प्राणी को हर जस मानी आवे, एन समगन रहे माया में कोह कैसे गुण गावे रहाउ। पुत मीत माया ममता सोए बिदा बंधावे, मृग दर्शना जो झूठे जग देखता से उठता आवे। मुक्त भगत का कारण स्वामी।

अल्लाह मन मन कुंचर काया उदयाना गुर अंकस सच शब्द निशाना राज द्वारा सोब सो मन चतुराई न चीनिया जाए बिन मारे क्यों कीमत पाए रहाओ कर मह अमृत तस कर ले नन्ना कार न कोय करे राख आप वड्याई दे नील अनिल अगन एक ठाई जल निवरी गुर बूझ बुझाई मन दे लिया रहस गुण गाई जैसा कर बाहर सो तैसा बैस कुफा मह आखो कैसा सागर डूगर निरपाओ ऐसा मुए को कहु मारे कौन न डरे कौट कैसा डर कवन शब्द पछाने तीने पौन जिन कहया तिन कहन वखान्या जिन बूझिया तिन सहज पछान्या देख बीचार मेरा मन मान्या कीरत सूरत मुक्त एक नाई तही निरंजन रहया समाई निज कर व्याप रहया निज ठाई उस्तत करह केते मन प्रीत मां तन मन सूचा साच सोचीत नानक हर भजनीता नीत गौड़ी कुआरेरी महला पहला ना मन मरै न कारज होए मन वस दूता दुरमत दोए मन मानै गुर ते हिक होए निर्गुण नराम गुण है वस होए आप निवार बिचारे सोए रहाओ मन भूलो बहु चितै विकार मन भूलो सरिया वै भार मन मानै हरे कंकार मन भूलो माया कर जाए काम बिरुदो रह ना ठाए हर भज प्राणी रसन रसाए हैवर गैवर कंचन सुत नारी बहु चिंता पिड़हालै पिर चालै हारी जुए खेलन काची सारी संपो संची भये विकार हर कसूक उबे दरबार सुख सहजे जपर दै मुरार नदर करे ता मेल मिलाए गुण संग्रह औगण शब्द जलाए गुरमुख नाम पदार्थ पाए बिन नावै सब दुख निवास मनमुख मूड माया चितवास गुरमुख ज्ञान तुर कर्म लिख्यास मन चंचल तावत फुन तावै साचे सूचे मैल न पावै नानक गुरमुख हर गुण गावै गौड़ी कुआरेरी महला पहला होमै करत्या नह सुख होए मन मन मत झूठी सच्चा सोए सगल बिगूते पावै धोए सो कमावै तुर लिख्या होए ऐसा जग देख्या जुआरी सब सुख मागै नाम बिसारी रहाओ आदेष्ट दिसै ता कहया जाए बिन देखे कहना बिरथा जाए गुरमुख दिसै सहज सुभाए सेवा सुरत एक लिवलाए सुख मांगत दुख आगल होए सगल विकारी हार परोए एक बिना झूठे मुक्त न होए कर कर करता देखै सोए तृष्णा अग्न शब्द बुझाए दूजा परम सहज सुभाए गुरमति नाम हृदय वसाए साची बाणी हर गुण गाए तह मह साचो गुरमुख पाओ नाम बिना नाही निज ठाओ प्रेम परायण प्रीतम राओ नदर करे ता बुझै नाओ माया मोह सर्ब जंजाला मनमुख कुचील कुशित बिकराला सतगुर सेवे चूकै जंजाला अमृत नाम सदा सुखनाला गुरमुख बूझै एक लिवलाए निज घर वासै साच समाए जमण मरना ठाक रहाए पूरै गुर ते पतन एह मत पाए कथनी कथो न आवै और गुरपुछ देखिया नाही दर होर दुख सुख भाणै तिसै रजाए नानक नीच कह लिवलाए गौड़ी महला पहला दूजी माया जगत चितवास काम क्रोध अहंकार बिनास दूजा कौन कहा नहीं कोई कोई सब मह एक निरंजन सोई रहो दूजी दुरमत आखै दोए आवै जाए मर दूजा होए तरण गगन नह देखो दोए नारी पुरख सबाई लोए रव सस देखो दीपक जयाला सर्ब निरंतर प्रीतम बाला कर कृपा मेरा चित लाया सतगुर मोको एक बुझाया एक निरंजन गुरमुख जाता दूजा मार शब्द पछाता एको हुक्म वरतै सब लोई एक सते सब ओपत होए होई राह दोवै खसम एको जान गुर कै शब्द हुक्म पछाण सगल रूप वर्ण मन माही कहो नानक एको सालाही गौड़ी महला पहला अध्यात्म कर्म करे ता साचा मुक्त भेद क्या जाने काचा ऐसा जोगी जुगत बिचारै पंच मार साच और धारै रहाओ जिसका अंतर साच वसावै जोग जुगत की कीमत पावै राव सास एको गृह उदयानै करणी कीरत कर्म समानै एक शब्द एक भिख्या मागै ज्ञान ध्यान जुगत सच जागै भै रच रह न बाहर जाए कीमत कौन रह लिवलाए आपे मेले भरम चुकाए गुर प्रसाद परम पद पाए गुर की सेवा शब्द विचार होमै मारे करनी सार जप तप संजम पाठ पुराण कहो नानक परम प्रमान गौड़ी महला पहला
खिमा गही ब्रत सील संतोखं रोग न व्याप ना जम दोखं मुक्त भय प्रभ रूप ना रेखं जोगी कौ कैसा डर होए रूख बिरख गृह बाहर सोए रहो निरपो जोगी निरंजन त्यावै अनदिन जागे सच लिवलावै सो जोगी मेरा मन भावै काल जाल ब्रह्म अग्नि जारे जरा मरण गत गर्भ निवारे आप तरह पितरी निसतारे सतगुर सेवे सो जोगी होए भय रच रह सो निरपो होए जैसा सेवै तैसो होए नर निह केवल निरपव नाओ नाथ नाथ करे बल जाओ पुनरप जन्म नाही गुण गाओ अंतर बाहर एको जाने गुर कै शब्द आप पछाणे साच शब्द दर निशाने शब्द मरै तिस निज घर वासा आवै न जावै चूकै आसा गुर कै शब्द कमल परगासा जो दिस सो आस निरासा काम क्रोध बिख भूख प्यासा नानक बिरले मिलह उदासा गौड़ी महला पहला ऐसो दास मिलै सुख होई दुख विसारै पावै सच सोई दर्शन देख पई मत पूरी अठ सठ मज्जन चरनह धूरी रहाओ नेत्र संतोखे एक लिवतारा जिहवा सूची हर रस सारा सच सुख सच करनी अब अंतर सेवा मंत्र पतासिया लाखा पेवा जह जह देखो तह तह साचा बिन बूझे चगरत जग काचा गुर समझावै सोजी होई गुरमुख विरला बूझै कोई कर कृपा राखो रखवाले बिन बूझे पशु भये बेताले गुर कहया अवर नहीं दूजा किस कहो देख करो अन पूजा संत हेत प्रभ तिर भवन तारे आत्म चीन सो तत बिचारे साच हृदय सच प्रेम निवास प्रणवत नानक हम ताके दास गौड़ी महला पहला ब्रह्म गर्भ किया नहीं जानिया वेद की विपत पड़ी पशुतान्या जिह प्रभ सिमरै तही मन मानिया ऐसा गर्भ बुरा संसार है जिस गुर मिलै तिस गर्भ निवारै रहाओ बल राजा माया अहंकारी जगन करै बहु भार अफारी बिन गुर पूछे जाए पयारी हरि चंद दान करै जस लीवै बिन गुर अमत न पाए अपे वै आप पुलाए आपे मत देवै दुर्मत हरनाकस दुराचारी प्रभ नारायण गर्भ प्रहारी प्रहलाद उदारे कृपा तारी भूलो रावण मुक्त अचेत लूटी लंका शीश समेत गर्भ गया बिन सतगुर हेत सहस बाहो मद कीट अमह खासा हरनाकस ले नक हो बिदासा दैत संघारे बिन भगत ब्यासा जरा संद काल जमन संघारे रक्त बीज काल नेम बिदारे दैत संघार संत निस्तारे आपे सतगुर शब्द बिचारे दूजै पाए दैत संघारे गुरमुख साच भगत निस्तारे बूढ़ा दुर्जोधन पत खोई राम ना जानिया करता सोई जन को दुख पचै दुख होई जन मेजै गुर शब्द ना जानिया क्यों क्यों सुख पावै भरम भुलानिया एक तिल भूले बहर पछतानिया कंस केस चाडूर चांडूर ना कोई राम ना चीनिया अपनी पत खोई बिन जगदीश ना राखै कोई बिन गुर गर्भ न मेटिया जाए गुरमुख धर्म धीरज हर नाए नानक नाम मिलै गुण गाए गौड़ी महला पहला चोआ चंदन अंक चढ़ावो पाठ पटंबर पहर पहर हटावो बिन हर नाम कहाँ सुख पावो क्या पहरो क्या ओट दिखावो बिन जगदीश कहाँ सुख पावो रहाओ कानी कुंडल गल मोतियन की माला लाल निहाली फूल गुलाला बिन जगदीश कहाँ सुख पाला नैन सलोनी सुंदर नारी खोड़ सीगार कर अत प्यारी बिन जगदीश भजे नित खुआरी दर कर महला सेज सुखाली एनिस फूल बशा बिशा वै माली बिन हर नाम सो देह दुखाली हैवर गैवर नेजे वाजे लसकर नीब खवासी पाजे बिन जगदीश झूठे दिवाजे सिद्ध कहावो रिद सिद्ध बुलावो ताज कुल है सिर छत्र बनावो बिन जगदीश कहाँ सच पावो खान मलूक कहावो राजा अबे तबे कूड़े है पाजा बिन गुर शब्द ना सबरस काजा होमै ममता गुर शब्द विसारी गुरमत जानिया हृदय मुरारी प्रणवत नानक सरन तुम्हारी गौड़ी महला पहला सेवा एक न जानस अवरे पर पंच ब्याद त्याग कवरे पाए मिलै सच साच सच साचरे ऐसा राम भक्त जन हो हर गुण गाय मिलै मल धोई रहाओ उदो कवल सगल संसार दुर्मत अग्न जगत पर जार सो उबरै गुर शब्द बिचार प्रेंग पतंग कुंचर अरमीना मिर्ग मरै सह अपना कीना तृष्णा राज तत नहीं बीना रा काम चितै कामण हितकारी क्रोध बिना सह सगल विकारी पत मत खोव है नाम विजारी पर घर चीत मनमुख डोलाए
गल जेवरी तंद लपटाए गुरमत छूटस हर गुण गाए ज्यो तन बिधवा पर कौ देई काम दाम चित पर वस सई बिन बिन पिर तृपत न कबहू होई पढ़ पढ़ पोथी सिमरत पाठा वेद पुराण पढ़ सुन थाटा बिन रस राते मन बहु नाटा ज्यो चातरिक जल प्रेम प्यासा ज्यो मीना जल माहे उलासा नानक हर रस पी त्रिपतासा गौड़ी महला पहला हठ कर मरै न लेखै पावै वेस करै बहुत पसम लगावै नाम बिसार बहुर पछतावै तू मन हर जियो तू मन सूख नाम बिसार सह जम दुख रहाओ चोआ चंदन अगर कपूर माया मगन परम पद तू परम पद तू दूर नाम बिसारिया सब कूड़ो कूर नेजे वाजे तख्त सलाम अदकी तृष्णा व्यापै काम बिन हर जाचे भगत न नाम आवाद अहंकार नाही प्रभ मेला मन दे पावै नाम सुहेला दूजै पाय अज्ञान दुहेला बिन दम के सौदा नहीं चाट बिन बोहित सागर नहीं वाट बिन गुर सेवे घाटे घाट तिसको वाहो वाहो जे वाट दिखावै तिसको वाहो वाहो जे शब्द सुनावै तिसको वाहो वाहो जे मेल मिलावै वाहो वाहो तिसको जिसका एहो जियो गुर शब्दी मथ अमृत पियो नाम वटाई तुद भाण दियो नाम बिना क्यों जीवा माए अनदिन जपत रहो तेरी शरणाए नानक नाम रते पत पाए गौड़ी महला पहला हो मैं करत भेख नहीं जानिया गुरमुख भगत विरले मन मानिया हो करत नहीं सच पाइया हो मैं जाए परम पद पाइया रहाओ हो मैं कर राजे बहुता वह हो मैं खपह जन्म मर जा वह हो मैं निवर गुर शब्द विचार चंचल मत ते आगे पंच सिंगार अंतर साच सहज कर आवह राजन जान परम गत पावह सच करनी गुर भरम चुकावह निरपो कै कर ताड़ी लावह हो कर मरना क्या पावै पूरा गुर भेटे सो चगर चुकावै जेती है तेती किहो नी नाही गुरमत गुरमुख ज्ञान भेट गुण गाही मैं बंधन बंद पद पवावै नानक राम भगत सुख पावै गौड़ी महला पहला प्रथमे ब्रह्मा काल कर आया ब्रह्म कमल पयाल न पाया आग्या नहीं लीनी परम पुलाया जो उपजै सो काल संघारिया हम हर राखे गुर शब्द बिचारिया रहाओ माया मोहे देवी सब देवा कारण छोटै बिन गुर की सेवा ओह अबनासी अलख भेवा सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना नाम हो भूलै जमका दुख सहना मैं तर नाम ज्यों राख हो रहना चौधरी राजे नहीं किसै मुकाम साह मरह संचह माया दाम मैं तन दी जय हर अमृत नाम रैयत महर मुकदम सिकदार निहचल कोई न दसै संसार अफरयो काल कूट सिर मारै निहचल एक सच्चा सच सोई जिन कर साजी तिन है सब गोई ओह गुरमुख जापै ता पत होई काजी सेक भेख फकीरा वड्डे कहावै हो मैं तन पीरा काल न छोड़ै बिन सतगुर की धीरा काल जाल जहवा अरनैणी अकानी काल सुन बिक बैणी बिन शब्द मूठे दिन रैणी हृदय साच वसै हर नाय काल न जोहे सकै गुण गाए नानक गुरमुख शब्द समाए गौड़ी महला पहला बोलह साच मिथ्या नहीं राई चल है गुरमुख हुक्म रजाई रह अतीत सच्चे सरनाई सच कर कारणा जो है मनमुख कौत आवत जावत दुख मोह रहाओ अपयो पियो अकथ कथ रहिय निज कर बैस सहज कर लहिय हर रस माते एहो सुख कहिय गुरमत चाल निहचल नहीं डोलै गुरमत सौच सहज कर हर बोलै पीवै अमृत तत् विरोलै सतगुर देख्या दीख्या लीनी मन तन अर्प्यो अंतर गत कीनी गत मित पाई आत्म चीनी भोजन नाम निरंजन सार परमहंस सच ज्योत अपार जह देखो तह एकंकार रह निरालम एका सच करनी परम पद पाया सेवा गुर चरणी मन ते मन मान्या चूकी अहं ब्रह्मणी इन बिद कौन कौन नहीं तरिया तारिया हर जस संत भगत निस्तारिया प्रभ प्रभ पाए हम अवर न पारिया साच महल गुरया लख लखाया निहचल महल नहीं छाया माया साच संतोखे परम चुकाया जिनकै मन वसया सच सोई तिनकी संगत गुरमत होई नानक साच नाम मल खोई गौड़ी महला पहला
राम नाम चित रापै जाका उपजंप दर्शन की जय ताका राम ना जप हो अपाक तुम्हारा जुग जुग दाता प्रभ राम हमारा रहाओ गुरमत राम जपै जन पूरा तित घट अनहत बाजे तूरा जो जन राम भगत हर प्यार से प्रभ राखे कृपा तार जिन कह हृदय हर हर सोई तिनका तरस परस सुख होई सर्ब जिया मह एको रवै मन मुख अहंकारी फिर जूनी पवै सो बूजै जो सतगुर पाए हो मैं मारे गुर सब दे पाए अर्ध उर्द की संद क्यों जाने गुरमत गुरमुख संद मिले मन माने हम पापी निर्गुण को गुण करिये प्रभ होय दयाल नानक जन तरिये सोलह अष्टपदिया ग्वारे री गौड़ी किया गौड़ी बैरागण महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद ज्यों गाई कौ गोयली राख है कर सारा अहनिस पाल है राख लेहे आत्म सुख तारा इत उत राख हो दीन दयाला तौ शरणागत नदर निहाला रहाओ जह देखो तह रव रहे सो रख राखन हारा तू दाता भुगता तू है तू प्राण आधारा किरत पया अद ऊर दी बिन ज्ञान बिचारा बिन उपमा जगदीश की बिन सह ना अंधियारा जग बिनसत हम देखिया लोभे अहंकारा गुर सेवा प्रभ पाया सच मुक्त द्वारा निज कर महल अपार को अपरंपर सोई बिन शब्द थिर को नहीं बूझै सुख होई क्या लै आया ले जाए क्या फस है जम जाला डोल बदा कस जेवरी आकाश पताला गुरमत राम गुरमत नाम ना विसरै सहजे पत पाईऐ अंतर शब्द निदान है मिले आप गवाईऐ नदर करे प्रभ आपणी गुण अंक समावै नानक मेर न चूकई लाहा सच पावै गौड़ी महला पहला गुर प्रसादी बूझले तौ होए निबेरा कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा बिन गुर शब्द न छूटिया देख हो विचारा जे लाख कर्म कमा वही बिन गुर अंधियारा रहाओ अंधे अकली बाहरे क्या तिन स्यों कहिया बिन गुर पंथ न सूजई कित बिद निर्बहिया खोटे

त्यो जीव है साकत नाम बिसारी एक निमिख जो सिमरन मह जिया कोट दिन सलाख सदा थिर थिया रहाओ बिन सिमरन त्रिग कर्म करास काक बतन बिष्टा महवास बिन सिमरन पय कुकर काम साकत बेसवा पूत ने नाम बिन सिमरन जैसे सींग सतारा बोल है कूर साकत मुखकारा बिन सिमरन गर्दब की न्यायी साकत थान पर इष्ट फिराही बिन सिमरन कुकर हर काया साकत रोबी बंद न पाया बिन सिमरन है आत्म घाती साकत चीन साकत नीच तिस कुल नहीं जाती जिस भया कृपाल तिस जिस भया कृपाल तिस सद संग मिलाया कहो नानक गुर जगत पतराया गौड़ी महला पंजवा गुर कै बचन मोहे परम गत पाई गुर पूरै मेरी पैज रखाई गुर कै बचन त्यायो मोहे नाओ गुर प्रसाद मोहे मिलिया थाओ रहाओ गुर कै बचन सुन रसन वखाणी गुर कृपा ते अमृत मेरी बाणी गुर कै बचन मिटिया मेरा आप गुर की दया ते मेरा वट प्रताप गुर कै बचन मिटिया मेरा भरम गुर कै बचन पेख्यो सब ब्रह्म गुर कै बचन कीनो राज जोग गुर कै संग तरिया सब लोग गुर कै बचन मेरे कार्य सिद्ध गुर कै बचन पाया नाओ निद जिन जिन कीनी मेरे गुर की आसा आसा तिसकी कटिया जमकी फासा गुर कै बचन जाग्या मेरा कर्म नानक गुर भेटिया पार ब्रह्म गौड़ी महला पंजवा तिस गुर को सिमरो सास सास गुर मेरे प्राण सत गुर मेरी रास रहाओ गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर के चरण धोए धोए पीवा गुर की रेण नित मज्जन करो जन्म जन्म की होमै मल रहो हरो तिस गुर को चूलावो पाखा महा अग्न ते हाथ दे राखा तिस गुर कै गृह ढोवो पाणी जिस गुर के जिस गुर ते अकल गत जानी तिस गुर कै गृह पीसो नीत जिस प्रसाद वैरी सब मीत जिन गुरु को जिन जिन जिन गुर मोको दीना जियो अपना दासरा आपे मुल लियो आपे लायो अपना प्यार सदा सदा तिस गुर को नमस्कार कल कलेस भय भ्रम दुख लाथा कहो नानक मेरा गुर समराथा गौड़ी महला पंजवा मिल मेरे गोबिंद अपना नाम देहो नाम बिना त्रिग त्रिग असने हो रहाओ नाम बिना जो पहरा खाए जो कूकर जूठन मह पाए नाम बिना चेता बेजेता व्यवहार जो मृतक मिथ्या सीकार नाम विसार करे रस भोग सुख सुपन नहीं तन मह रोग नाम त्याग करे अनकाज बिन सजाए झूठे सब पाज नाम संग मन प्रीत न लावे कोट कर्म करतो नरक जावे हर का नाम जिन मन न आराधा चोर की न्यायी जमपुर बादा लाख्या डंबर बहुत बिस्तारा नाम बिना झूठे पासारा हर का नाम सोई जन ले कर कृपा नानक जिस दे गौड़ी महला पंजवा आद मद जो अंत निबाह सो साजन मेरा मन चाह हर की प्रीत सदा संग चालै दयाल पुरख पूर्ण प्रतपालै रहाओ बिन सद नाही छोड़ ना जाए जह पेखा तह रहया समाए सुंदर सुगड़ चतुर नहीं जिय जाता दाता भाई पूत पिता प्रभ माता जीवन प्राण आधार मेरी रास प्रीत लाई कर हृदय निवास माया सिलक काटी गोपाल कर अपना लीनो नदर निहाल सिमर सिमर काटे सब रोग चरण ध्यान सर्ब सुख भोग पूर्ण पुरख नवतर नित बाला हर अंतर बाहर संग रखवाला कहो नानक हर हर पद चीन सर्बस नाम भगत कहो दीन राग गौड़ी माज महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद खोजत फिरिया संख अंत न पारिया सेई होए भगत जिना कृपारिया हो वारिया हर वारिया रहाओ सुन सुन पंथ डराओ बहुत पै हारिया मैं तक्की ओट संताह लेहो बारिया मोहन लाल अनूप सर्ब साधारिया गुर निव निव लागो पाए देहो दिखारिया मैं किए मित्र अनेक एक सबले हारिया सब गुण किस ही नाहे हर पूर भंडारिया चहो दिस जपिया नाओ सूख सवारिया मैं आही ओट तुहार नानक बलिहारिया गुर काट्यो पुजा पसार मोह कु पारिया मैं जीत्यो जन्म अपार बहुर ना हारिया मैं पायो सर्ब निधान कथ कथारिया हर तरगह सो बावंत बाहल उडारिया जन नानक लद्दा रतन

नारायण हर रंग रंगो जप जेहवा हर एक मंगो रहाओ। तज हो मैं गुर ज्ञान भजो मल संगत तुर कर्म लिखियो। जो दिसै सो संग न गयो साखित मूड लगे पच मोयो। मोहन नाम सदा रव रहयो कोट मते किन्नै विरल गुरमुख लहयो। हर संतन हर नमो नमो नौ नित पाप है अतुल सुखो। नैन अलोवो साध जनो हृदय गावो नाम निदो। काम क्रोध लोभ मोह तजो जन्म मरण दोहते रहयो। दुख अंधेरा करते मिट्यो गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बलयो। जिन सेव्या सो पार परयो जन नानक गुरमुख जगत तरयो। महला पंजवा गौड़ी हर हर गुर गुर करत भरम गए। मेरा मन सब सुख पायो रहाओ। बल तो जल तो तौकिया गुर चंदन सीत लायो। अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर ज्ञान दीपायो। पावक सागर गहरो चर संतन नावत रायो। ना हम कर्म ना धर्म सोच प्रभ गह पुजा पायो। पाव खंडन दुख भंजनो भगत वछल हर नायो। नाथ है नाथ कृपाल दीन संब्रत संत ओटायो। निर्गुनिया रे की बेनती देहो दर्श हर रायो। नानक सरन तुहारी ठाकुर सेवक द्वारा आयो। गौड़ी महला पंजवा रंग संग बिखिया के भोगा इन संग अंध न जानी। हो संचो हो खाटता सगल सगली अवद बिहानी रहाओ। हो सूरा प्रधान हो तको नाही मुझ है समानी। जो बनवंत आचार कुरीना मन मह होए गुमानी। ज्यो उलझायो बाद बुद्ध का मर्त्या नहीं बिसरानी। भाई मीत बंद बसके पाशा तिन्हू कौ संपानी। जित लागो मन बासना अंत साई प्रगटानी। अहं बुद्ध सुच कर्म कर एह बंधन बंधानी। दयाल पुरख कृपा करहो नानक दास दसानी। जुमला एक ओंकार सत नाम करता पुरख गुर प्रसाद। रा गौड़ी पूर्वी शांत महला पहला मंदर है। रा गौड़ी पूर्वी शांत

नमः अष्टपदि सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल क्लेश अनमाहे मिटावो सिमरो जास विसुंपर एक नाम जपत्या गणत्या अनेक वेद पुराण सिमरत सोदा अखियर कीने राम नाम की अखियर किनका एक जस जीव बसावै ताकि महिमा गनी न आवै ताकि आकांक्षी एक है दर्श तुहारो नानक उन संग मोहे उदारो सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जनाक मन बसराम रहाओ प्रभ कै सिमरन गर्भ न बस प्रभ कै सिमरन दुख जम नस प्रभ कै सिमरन काल पर हर प्रभ कै सिमरन दुश्मन टर प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागे प्रभ कै सिमरन अन्न जागे प्रभ कै सिमरन भावना व्याप प्रभ कै सिमरन दुख ना संताप प्रभ का सिमरन साध कै संग सुरब निधान नानक हर रंग प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा प्रभ कै सिमरन बिनस दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभ कै सिमरन तर्क मानी प्रभ कै सिमरन होय सो भला प्रभ कै सिमरन सो फल फला से सिमरह जन आप सिमराए नानक ता कै लागो पाए प्रभ कै सिमरन सब ते ऊचा प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुज प्रभ कै सिमरन सब कुछ सुज प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा प्रभ कै सिमरन पूरण आसा प्रभ कै सिमरन मन की मल जाय अमृत नामृत माहे समाये प्रभ जी बस साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभ को सिमरह से धनवंते प्रभ को सिमरह से पदवंते प्रभ को सिमरह से जन परवान प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधान प्रभ को सिमरह से बे मोहताजे प्रभ को सिमरह से सर्व के राजे प्रभ को सिमरह से सुखवासी प्रभ को सिमरह सदा बनासी सिमरन ते लागे जने आप दयाला नानक जन की मंगै रवाला प्रभ को सिमरह से पर उपकारी प्रभ को सिमरह तन सद बलिहारी प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे प्रभ को सिमरह तन सुख बिहावै प्रभ को सिमरह तन आत्म जीता प्रभ को सिमरह तन निर्मल रीता प्रभ को सिमरह तन अर्ध कनेरे प्रभ को सिमरह बसह हर नेरे संत कृपा ते अनदिन जाग नानक सिमरन पूरा भाग प्रभ कै सिमरन कारज पूरे प्रभ कै सिमरन कबहु ना चूरे प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी प्रभ कै सिमरन सहज समानी प्रभ कै सिमरन नेह चले आसन प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन प्रभ कै सिमरन अगहल चुनकार सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार सिमरह से जन जन ब्रह्ममया नानक तिन जन सरनी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग बेद उपाय हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीच चहो कुंड जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन कियो सगले अकारा हर सिमरन महयाप निरंकारा कर कृपा जसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन।

0: ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾ ਲੋਭ ਧਰੋਹ ਇਹੋ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਲੇਹੋ ਆਪਨ ਕਰ ਕਰਮ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਿ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਗ ਅੰਤ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਤਾ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਮਰੀ ਗਤਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਲੋਕ ਦੇਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕੈ ਲਗ ਹੈ ਆਨ ਸੋ ਆਏ ਨਾਨਕ ਕਹੂ ਨ ਸੀਜਈ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਪਤ ਜਾਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਸ ਵਸਤੂ ਲੇ ਪਾਸ਼ ਪਾਵੈ ਏਕ ਬਸਤ ਕਾਰਨ ਬਿਖੋਟ ਗਵਾਵੈ ਏਕ ਭੀ ਨਾ ਦੇ ਦਸ ਭੀ ਹਿਰ ਲੇ ਤੋ ਮੂੜਾ ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਕਰੀ ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸਿਉ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾਕੋ ਕੀ ਜਾ ਸਤ ਨਮਸਕਾਰਾ ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਲਾਗ ਪ੍ਰਭ ਬੀਠਾ ਸਰਬ ਸੂਖ ਤਾਹੂ ਮਨ ਊਠਾ ਜਿਸ ਜਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਇਆ ਸਰਬ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਗਣਤ ਸਾਹੋ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰਾਸ ਖਾਤ ਪੀਤ ਵਰਤੈ ਅਰਦ ਉਲਾਸ ਆਪਣੀ ਅਮਾਨ ਕਛ ਬਹੁਰ ਸਾਹੋ ਲੇ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨ ਰੋਸ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੈ ਬਹੁਰ ਉਸਕਾ ਵਿਸਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੈ ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਸੇ ਆਗਿਆ ਰਾਖੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮਾਥੈ ਉਸ ਤੇ ਚੌਕਨ ਕਰੈ ਨਿਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ਅਨਕ ਭਾਤ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ ਸਰਬਰ ਹੋਵਤ ਜਾਨ ਜਾਨ ਅਨੇਤ ਬਿਰਖ ਕੀ ਛਾਇਆ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਵੈ ਉਹ ਬਿਨਸੈ ਉਹ ਮਨ ਪਛਤਾਵੈ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਚਾਲਨ ਹਾਰ ਲਪਟ ਰਹੇ ਹੋ ਤਹ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰ ਪਟਾਉ ਸਿਉ ਜੋ ਲਾਵੈ ਨੇਹ ਤਾਕੋ ਹਾਥ ਨਾ ਆਵੈ ਕੇਹ ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲਈ ਲਾਈ ਮਿਥਿਆ ਧਨ ਧਨ ਕੁਟੰਬ ਸੁਭਾਇਆ ਮਿਥਿਆ ਹੋਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ ਮਿਥਿਆ ਰਾਜਨ ਜੋਬਨ ਧਨ ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਧਨ ਮਾਲ ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ ਮਿਥਿਆ ਰਥ ਹਸਤੀ ਅਸਵ ਵਸਤਰਾ ਮਿਥਿਆ ਰੰਗ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਪੇਕ ਹਸਤਾ ਮਿਥਿਆ ਧਰੋਹ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ ਮਿਥਿਆ ਆਪਸ ਉਪਰ ਕਰਤ ਗੁਮਾਨ ਮਿਥ ਅਸਥਿਰ ਭਗਤ ਸਾਧ ਕੀ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਮਿਥਿਆ ਸ੍ਰਵਨ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਨਹਿ ਮਿਥਿਆ ਹਸਤ ਪਰ ਦਰਬ ਕਉ ਹਿਰਹਿ ਮਿਥਿਆ ਨੇਤਰ ਪੇਖਤ ਪਰ ਤ੍ਰਿਯ ਰੂਪਾਦ ਮਿਥਿਆ ਰਸਨਾ ਭੋਜਨ ਅਨਸਵਾਦ ਮਿਥਿਆ ਚਰਨ ਪਰ ਬਿਕਾਰ ਕਉ ਧਾਵ ਹੈ ਮਿਥਿਆ ਮਨ ਪਰ ਲੋਭ ਲੋਭਾਵ ਹੈ ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰਾ ਮਿਥਿਆ ਬਾਸ ਲੇਤ ਬਿਕਾਰਾ ਬਿਨ ਬੂਜੇ ਮਿਥਿਆ ਸਭ ਭਏ ਸਫਲ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਰਤੀ ਸਾਕਤ ਕੀ ਆਰਜਾ ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਹੋਵਤ ਸੂਚਾ ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਧਨ ਅੰਦ ਮੁਖ ਆਵਤ ਤਾ ਕਹਿ ਦੁਰਗੰਧ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਬਿਰਥਾ ਬਿਹਾਏ ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜਿਉ ਖੇਤੀ ਜਾਏ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬ੍ਰਿਥੇ ਸਭ ਕਾਮ ਜਿਉ ਕਿਰਪਨ ਕੇ ਨਿਰਾਰਥ ਦਾਮ ਧਰਨ ਧਨ ਤੇ ਜਨ ਜਿਹੇ ਘਟ ਬਸਿਓ ਹਰ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਛ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖ ਹੋ ਗੱਡ ਲਾਵਤ ਜਾਨਣ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਬੀਨ ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਨਾ ਕਾਹੂ ਭੀਨ ਅਵਰ ਉਪਦੇਸਾ ਆਪ ਨਾ ਕਰੈ ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੈ ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਬਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤਿਸ ਕੀ ਸੀਖ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਤੁਮ ਭਾਨੇ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਨਾਨਕ ਓਨ ਜਨ ਚਰਨ ਪਰਾਤਾ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਪਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਜਾਨਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਪ ਹੈ ਮਾਨਾ ਆਪ ਹੈ ਆਪ ਆਪ ਕਰਤ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਿਸੈ ਦੂਰ ਜਨਾਵਤ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਵਤ ਨੇਰਾ ਉਪਾਵ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲ ਤੇ ਰਹਿਤ ਸਭ ਕਛ ਜਾਨਾ ਆਤਮ ਕੀ ਰਹਿਤ ਜਿਸ ਭਾਵ ਤਿਸ ਲਾਏ ਲੜ ਲਾਏ ਥਾਮ ਥਨੰਤਰ ਰਹੇ ਅਸਮਾਏ ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਨਿਮਕ ਨਾਮਕ ਜਪ ਨਾਨਕ ਹਰੀ ਸਲੋਕ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨ ਸਜਾਇ ਹਮੇਵ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨਮਾਹ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਤ ਤਨ ਲਾਭ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵ ਹੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸ ਹੈ ਸੁਖ ਮੰਦਰ ਤਿਸ ਹੈ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ ਅਠ ਪੈਰ ਸਿਮਰੋ ਤਿਸ ਰਸਨਾ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਧਿਆਵਨ ਜੋਗ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਹਟਾਵੈ ਤਿਸ ਹੈ ਤਿਆਗ ਕਤ ਅਵਰ ਲੁਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇਜ ਸੋਈ ਜੈ ਮਨੇ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤਾਕਾ ਜਸ ਕਾ ਵੀਜੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਜ ਸਭ ਕਉ ਮਾਨੈ ਮੁਖ ਤੇ ਮੁਖ ਤਾਕੇ ਮੁਖ ਤਾਕੋ ਜਸ ਰਸਨ ਬਖਰਨੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੋ ਰਹਿਤਾ ਧਰਮ ਮਨਸਦਾ ਧਿਆਏ ਕੇਵਲ ਪਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜਪਤ ਤਰ ਗਹਿ ਮਾਨ ਪਾਵ ਹੈ ਨਾਨਕ ਬਦ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਵ ਹੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ ਲਿਵ ਲਾਵੋ ਤਿਸ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਿਤ ਮਨ ਸੁਖ ਭਾਵ ਹੈ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦਰ ਢਾਕੇ ਮਨ ਸਰਨੀ ਪਰ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਜ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ ਮਨ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭ ਊਚੇ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਏ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇਹੇ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਭੂਖਨ ਬਹਿਰੀਜੈ ਤਿਸ ਮਨ ਤਿਸ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉਂ ਆਲਸ ਕੀਜੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਵ ਹਸਤ ਅਸਵਾਰੀ ਮਨ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਕਬਹੂ ਨਾ ਬਿਸਾਰੀ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਕ ਧਨਾ ਰਾਖ ਪਰੋਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾ जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सतत सहत्याई सहत्याई जो एक अखै इहां उहां नानक तेरी रखै जेह प्रसाद ते कर है पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान जेह प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ कौ सास सास चतारी जेह प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरह सदा अनूप जेह प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जेह प्रसाद तेरी पत रह गुर प्रसाद नानक जस कह जेह प्रसाद सुन है करन नाद जेह प्रसाद पे कह बिसमाद जेह प्रसाद बोल है अमृत रसना जेह प्रसाद सुख सहजे बसना जेह प्रसाद हस्त कर चल है जेह प्रसाद संपूर्ण फल है जेह प्रसाद परम कत पाव है जेह प्रसाद सुख सहज समाव है ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लाग हो गुर प्रसाद नानक मन जाग हो जेह प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल ना मनो बिसार जेह प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ताको जाप जेह प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिस है जान मन सदा हजूरे जेह प्रसाद तू पाव है साच रे मन मेरे तू दास्यो राच जेह प्रसाद ताकि गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गवाए सो हर गुण गाओ प्रभ कृपा ते होए प्रकाश प्रभु दया ते कमल विकास प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए सर्व निधान प्रभ तेरी माया आप हो कछु न किन्हू लया जित जित लाभ हो तित लग है हर नाथ नानक इन कह कछु नहात श्लोक अगम गाद पाप ब्रह्म सोए जो जो कह सो मुक्त होए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध सात कै संग मुख उजल होत सात संग मल सगली खोत सात कै संग मिटै अभिमान सात कै संग प्रगटै सुज्ञान सात कै संग बुझै प्रभ नेरा सात संग सब होत निबेरा सात कै संग पाए नाम रतन सात कै संग एक ऊपर चतर सात की महिमा बरना कौन पुरानी नानक सात की शोभा प्रभ माहे समानी सात कै संग गोचर मिलै सात कै संग सदा पर फुलै साध कै संग अब है बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हो सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन साध कै संग नकत हूं तावै साध संग अस्थित मन पावै साध कै संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसान साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महापुनीत साध संग किसु नहीं बैर साध कै संग न बीघा पैर साध कै संग ना ही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध कै संग ना ही कौ ताप साध कै संग तजै सब आप आपे जाने साध बटाई नानक साध प्रभु बने आई साध कै संग नम कब हूं तावै साध कै संग सदा सुख पावै साध संग बसता गोचर लह साधु कै संग अजर सह साध कै संग बसै थान ऊंचा साध साधु कै संग महल पहुंचा साधक संग दृढ़ सब धर्म साधक संग केवल पाल ब्रह्म साधक संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुर्बान साधक संग सब को उधार साध संग साजन मीत कुटाम निस्तार साधु कै संग सो धन पावै जिस तन गे ते सब को वरसावै साधु संग धर्म राय करे सेवा साधक संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप लायन साध संग अमृत गुण गायन साधक संग सब सरब थान गम नानक साध कै संग सफर जनम साध कै संग नहीं कश काल दर्शन पीड़ित होत निहाल साध कै संग कलूकत हर साध कै संग नरक पर हर साध कै संग इहां उहां सुहेला साध संग बिसरत हर मेला सजो इच्छा सोई फल पावै साध कै संग न बिरथा जावै बार ब्रह्म साध रद बसै नानक उदर साध सुन रसै साध कै संग सुनो हर नाओ साध संग हर के गुण गाओ साध कै संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निसर साध कै संग लगै प्रभ मीठा साधु कै संग कट कट डीठा साध संग भय अज्ञाकारी साधु संगत पाई हमारी साध कै संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग साध की महिमा वेद न जान है जेता सुन है तेता पखियान है साध की उपमा तेहो गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊच दे ऊची साध की शोभा मूच दे ऊची साध की शोभा साध की शोभा साध बनी आई नानक साध प्रभ भेद न पाई श्लोक मन साचा मुख साचा सोय अवर न पेका एक से बिन कोय नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होय अष्टपति ब्रह्म ज्ञानी सदा नर लेप जैसे जल मह कमल लेप ब्रह्म ज्ञानी सदा नर दोख जैसे सूर सर्व कौ शोक ब्रह्म ज्ञानी कै दृश्य समान जैसे राज रंग कौ लागै तुल पमान ब्रह्म ज्ञानी कै तीरज एक ज्यों बसदा कौ खोदै कौ चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाव नानक ज्यों बावक का सहज सुभाओ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागै जला ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रकाश जैसे धरु पर्याकाश ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सतर समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊच ते ऊंचा मन अपना है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन भय नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी जीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कश बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी क्या गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी परोपकारो महा ब्रह्म ज्ञानी कह ना ही धंधा ब्रह्म ज्ञानी रे तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी कह हो सोफला ब्रह्म ज्ञानी सफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कह एक रंग ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदस सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहं बुद्ध्यागत ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कह कर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी कह होया चैत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जस करै प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइय ब्रह्म ज्ञानी का बल बल जाइय ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी को कौन जाना भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश ब्रह्म ज्ञानी का कथ न जाया दाखिर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाना ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाना ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जीव का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ नानक ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी सलोक और तारा जो अंतर नाम सर्व मैं पेख है भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार है नानक हुआ पर सगल निस्तरा अष्टपदी मत मिथ्या नाही रसना परस मन मह प्रीत रंजन दर्श परत रूप न पेख है नित्र सात की टहल संत संग हेत कर न सुना काहू की निंदा सब ते जाना आपस को मंदा गुरु प्रसाद बिखिया पर हर मन की बासना मन ते टर इंद्री जित पंच तोख ते रहत नानक कोट मदे को ऐसा परस बैसनो सो जिस ऊपर सो ऊपर सो प्रसान बिसन की माया ते होए भिन्न कर्म करत होवै नेह कर्म तिस बैसनो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं भाषा केवल भगत कीर्तन संगराचा मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप त्रिडैवर है नाम जपावै नानक ओह बैसनो परम कथ पावै भगौती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मन ते बिनसै सगला भरम कर पूजा सगल पाल ब्रह्म साधु संग पापा मल को भगत भगौती की मत उत्तम हो वै भगवंत की टहल कर नित नीत मन तन अर्पै बिसन प्रीत मन ते चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगौती भगवंत को पावै सो पंडित जो मन प्रबोधै राम नाम आत्म मह सोधै राम नाम सार रस पीवै उस पंडित के उपदेश जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जो न आवै वेद पुराण स्मृत बूझै मूल सूक्ष्म मह जान अस्थूल चौहो वर्णा को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा देश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौहो वर्णा मह जपै को नाम जो जो जपै तिस की गत होए साधु संग पावे जन कोय कर कृपा अंतर और तावै पास प्रेत मुक्त पाथर को उतारै सर्व रोग का औकत नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत कितै न पाइयै धर्म नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म जिसका मन पाल ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास आत्म राम दस नदरी आया दास सतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास तर्क है प्रमाण अपने दास को आप कृपा करै तिस दास को सब सो जी पर सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै जीवन मुक्त सो कहावै तैसा हरक तैसा उस शोक सदा अनंत है नहीं वियोग तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत ऐसी बिख काटी तैसा अमृत तैसी बिखकाटी तैसा मां तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान जो वरताए साई जुगत नानक ओह पुरख कहिया जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित कर राखै तैसा तिर नाउ आपे करण करावन जोग प्रभावै सोई फन होग पसरो आप होए अनंत तरंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत देहे तैसा प्रकाश पार ब्रह्म करता बिना सदा सदा नानक दयाल ना सिमर सिमर नानक भय निहाल सलोक औसत कर है अनेक जाने अंत न पारा वार नानक रचना प्रभ रची बहु बेद अनक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पूजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भय तीर्थवासी कई कोट बन ब्रह्म है उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान ध्यान है कई कोट कब कब विचार है कई कोट नवतन नाम त्याव है नानक करते कांत न पाव है कई कोट भाई अभिमानी कई कोट अंध ज्ञानी कई कोट निकृपण कठोर कई कोट अभिग आत्म निकोर कई कोट पर दर्ब को है कई कोट पर दुख न कर है कई कोट माया सर्व माहे कई कोट पर देश ब्रह्मा है जित जित लाभ हो तित तित लगना नानक करते की जान करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्व उपाय, कई कोट पाथर ब्रिख निपजाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भू मंडल, कई कोट सस्यर सूर नखियत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सर शतर, सगल समग्री अपने सूद धार, नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निसतार, कई कोट राजस्ताम सातक, कई कोट वेद पुराण सिमृत अरसास्त, कई कोट किए रत्न समोद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चर जीवे, कई कोट गिरी मेर सुवर्ण थीवे, कई कोट जख्य किन्नर पिसाच, कई कोट भूत प्रेत शुभकर मृगाच, सब ते नेर सब हूं ते दूर, नानक आप लिप्त रह भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक स्वर्ग निवासी, कई कोट जन्म है जीव है है, कई कोट बहुजोनी फिर है, कई कोट बैठती ही काहे, कई कोट काल है थक पाए, कई कोट गीत नवंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जह भाणा तह तह राखे, नानक सब किश प्रभ कै हाथ है, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संगत निलवरागी, कई कोट प्रभ को खो जनते, आत्म है बल प्रमल हंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिनको मिलियो प्रभ विनाश, कई कोट माग है सतसंग, पाल प्रभ दिन लागा रंग, जिनको होए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट काणी अर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट होय अवतार, कई जुगत कीनो विस्थार, कई बार बार पसरियो पासार, सदा सदा एक एकंकार, कई कोट कीने बहु भांत, प्रभ ते होय ब्रह्म माहे समात, जाता का अंत न जाने कोय, आपे आप नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म प्रकाश, कई कोट तत के बेते सदा निहार है, एको नितरे, कई कोट नाम रस पीव है, अमर पय सद सद ही जीव है, कई कोट नाम गुण गाव है, आत्म रासुक सहज समाव है, अपने जन को सा सा समारे, नानक ओए परमेश्वर के प्यारे सलोक, करण काम प्रभ एक है दूसर नाही कोय, नानक तिस बलहार बलिहार न, जल थल महियल सोए, अष्टपदी करण कारावन करण, जोग जुत स्वभाव है सोई हो, किन मैं ताप्यो तापन हारा, अंत नहीं किस पारा वारा, हुक्मे तारा तर रहा वह, हुक्मे उपजय हुक्म समाव, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनक रंग प्रकार, कर कर देखा अपनी वडियाई, नानक सब मह रहया समाई, प्रभ भावै मानव कथ भावै, प्रभ भावै ता पाथर तरावै, प्रभ भावै बिन सास दे राखै, प्रभ भावै ता हर गुण भाखै, प्रभ भावै ता पत दे उधारै, आप कराय अपन बीचारै, दुहां सरिया काय आप स्वामी, खेलै बिकसाय अंतर जामी, जो भावै सो कार करावै, नानक दृष्टि अवरण आवै, कहो मानक दे क्या होय आवै, जो तिस भावै सोई करावै, इसकै हाथ ना इसकै हाथ होय ता सब किछ ले, जो तिस भावै सोई करे, अनजानत विख्या मह रचै, जे जानते अपने आप बचै, पर मे भूलै तै तिस धावै, निमिख माहे चार कुंट फिर आवै, कर कृपा जिसे अपनी भगत ते, नानक ते जन नाम मिले, एखिन मह नीच कीट कौ राज, बाल ब्रह्म गरीब निवाज, जाका दृष्ट कछु न आवै, तिस तत्काल तह जिस प्रगटावै, जाकू अपनी करै बखशीस, ताका लेखा न गनै, जगदीश जियो पैन सब तिस की रास, कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रकाश, अपनी बणते आप बनाई, नानक जीवै देख बडाई, इसका बल नाही इस हाथ, करण करावन करण करावन, सर्व को नाथ आग्ञा कारी बपरा जियो, जो तिस भावै सोई फुन थियो, कबहू ऊंच नीच मह बसै, कबहू शोक हर रंग हसै, कबहू निंद चिन्ह व्यवहार, कबहू बाकाश बयाल, कबहू बेता ब्रह्म विचार, नानक आप मिलावनहार, कबहू नृत करै बहु भांत, कबहू कबहू सोई रह दिन रात, कबहू महाक्रोध विकराल, कबहू सर्व की हो तरवार, कबहू होय बह बट राजा, कबहू भेखारी नीच का साजा, कबहू अपकीर्त मह आवै, कबहू भला भला कहावै, ज्यो प्रभ राख राख तिवही रवै, गुरु प्रसाद नानक सच कहै, कबहू होय पंडित करे बखियान, कबहू मोह धारी लावै ध्यान, कबहू तट तीर्थ स्नान, कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबहू कीट हस्त पतंग होय जिया अनक, जोन जन मैं परमिया, नाना रूप जो स्वागी दिखावै, जो प्रभ भावै तिवै नचावै, जो तिस भावै सोई होय, नानक दूजा अवर न कोय, कबहू साध संग हो पावै, उस स्थान ते बहर न आवै, अंतर होय ज्ञान प्रकाश, उस स्थान का नहीं विनाश, तन मन नाम रते एक रंग, सदा बस है बाल ब्रह्म कै संग, ज्यों जल मह जले आए कटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सत कुरबान सलोक, सुखी बसै मसकीनी आयाप निवार तले, बडे बडे अहंकारिया, नानक गर्व कले अष्टपदी, जिसके अंतर राज अभिमान, सो नरक पाती होवत समान, जो जानै मैं जो बनवंत, सो होवत विष्टा का जंत, आप सको कर्मवंत कहावै, जन्म मरै बहु जोन प्रमावै, धन भूम का जो करै गुमान, सो मूर्ख अंधा ज्ञान, कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै, नानक इहां मुक्ति आगै सुख पावै, तनवंता होय कर कृपावै, तृण समान कछ संग न जावै, बहु लसकर मानक ऊपर करे आस, बल पीतरता का होय विनाश, सबते आप जानै बलवंत, खिन मैं होय जाय पसमंत, किसै न बताय आप अहंकारी, धर्मराज तिस करे खुवारी, गुरु प्रसाद जाका मिटाय अभिमान, सो जन नानक तरग है पावै मान, कोट कर्म करै हो तारे, श्रम पावे सगले बिरथारे, अनक तपस्या करे अहंकार, नरक स्वर्ग फिर फिर फिर फिर अवतार, अनक जतन करे आत्म नहीं द्रवै हर दर गह कहो कैसे कवै आपस कहो जो भला कह सहल भलाई निकट न आवै सर्व की रेन जा का मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाद बुझते कछ होए तब इस को सुख नही कोय जब यह जाना मैं किश करता तब लग गर्भ जोन मह फिरता जब जब तार कऊ बैरी मीत तब लग नह चलना ही चीत जब लग मोह मगन संग माए जब तब लग धर्म राय देस जाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटै गुरु प्रसाद नानक हो छूटै सहस कटे लख कोटता वह तृप्त न आवै माया पाशा पावै अनक भोग बिकिया के करै नह तृप्तावै खप खप मरै बिना संतोख नहीं कऊ राजा सुपन मनोरथ प्रथे सब काजै नाम रंग सर्व सुख होए बटभागी किसै प्राप्त होए करण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावन करना हार इसके हाथ कहाँ बिचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप या प्रभ सोए जो किश कीना सो अपने रंग सब ते दूर सब हूँ कै सांग बूझ जाय देखै करे विवेक आप है एक आप है अनेक मरै न बिनसाय आवै न जाय नानक सद ही रहया समाये आप उपदेसै समझय आप आपे रचया सब कै साथ आप कीनो अपन विस्तार सब किश सब के सब कश उसका ओह करना हार उसते पिन कहो किश होए थाम थनम तरे को सोए अपने चरते आप करना हार कौतक करे रंग अपार मन मैं आप मन अपने माहे नानक कीमत कह ना जाए सात सात सात प्रभ स्वामी गुरु प्रसाद किने वखियानी सच सच सच सब कीना कोट मदे किने बिरले की चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी वाणी घट घट सुनी श्रवण बखियानी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत सलोक संत सरण जो जन परै सो जन उदर नहार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपति संत कै दुखन आर जा घटै संत कै दुखन जमते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक मैं पाए संत कै दुखन मत होए मलीन संत कै दुखन सोभा ते हीन संत के हते को रखै न कोय संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग निंदक पीतरै संत के दुखन ते मुख भवै संतन कै दुखन काग ज्यों लवै संतन कै दुखन सर्प जोन पाए संत कै दुखन त्रिगत जोन किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा मह जलै संत कै दुखन सब को छलै संत कै दुखन तेज सब जाए संत कै दुखन नीच नीच आए संत तोकी का थाओ को नाहे नानक संत भावै ताओए भी कत पाए संत का नंदक महा अतताई संत का नंदक किन टिकन ना पाई संत का नंदक महा हत्यारा संत का नंदक परमेश्वर मारा संत का नंदक राज ते हीन संत का नंदक दुखिया अर दीन संत के नंदक को सर्ब रोग संत के नंदक को सदा बिजोग संत की निंदा दोख मैं दोख नानक संत भावै ता उस का पी होए मोक संत का दुखी सदा पवित संत का दुखी किसै का नहीं मित संत के दुखी को डान लागै संत के दुखी को सब त्यागै संत का दुखी महा अहंकारी संत का दुखी सदा बेकारी संत का दुखी जन्मै मरै संत की दुख ना सुख ते टरै संत के दुखी को नाही ठाओ संत नानक संत भावै ता लय मिलाए संत का दुखी अद बीज ते टूटै संत का दुखी कितै काज ना पहुँचै संत के दुखी को ध्यान भरमाइयै संत का दुखी उजड़ पाइयै संत का दुखी अंतर ते थोता थोथा ज्यों सांस बिना मृतक की रोता संत के दुखी की जड़ किश नाहे आपन बीज आप ही खाहे संत के दुखी को अवर न राख नहार नानक संत भावै ता लय ओ बार संत का दुखी यो बिरलाए ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजा ज्यों पावक ईदन नहीं तरापै संत का दुखी छुटाए केला ज्यों बुआड़ तिल खेत माहे दुहेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सत मिथ्या कहत किरत नतक का तुर ही पया नानक जोत सभावै सोई थेया संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए संत का दुखी को तर्क है मिलै सजाए संत का दुखी सदा सह कहियै संत का दुखी ना मरै ना जीवाइयै संत के दुखी की पुजै न आसा संत का दुखी ओठ चलै नरासा संत के दुख न तृष्टै कोए जैसा भावै तैसा कोई कोई होए पया कीर्तना मेटै कोए नानक जानै सच्चा सोए सब किरत सब घट तिसका ओह करना हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभ की उस्त करो दिन रात तिसहै त्यावहो सास गिरास सब कछ वरतै तिसका किया जैसा करै तैसा को थिया अपना खेल आप करना हार दूसर कौन कह बीचार जिसनो कृपा करै तिस आपन नाम दे बड़ भागी नानक जन से
1: श्लोक तजहु सियानप सुरजन हो सिमरो हर हर राय एक आस हर मन रखो नानक दुख भरम को जाए अष्टपदी मानुख की टेक वृथि सब जान देवन को एक है भगवान जिस कह दिए रह अगाए बहुर न तृष्णा लागे आए मारे राखे एको आप मानुख कै किश नाही हाथ तिसका हुक्म बूझ सुख होए तिसका नाम रख कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन न लागे कोए ਉਸਤਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ। ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ, ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲਿਹੇ ਜੀਓ। ਨੈਨੋ ਪੇਖ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੰਗ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨਸੈ ਸਭ ਸੰਗ। ਚਰਨ ਚੱਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਿਟੈ ਪਾਪ ਜਪੀਐ ਹਰ ਬਿੰਦ। ਕਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸ੍ਰਵਨ ਹਰ ਕਥਾ, ਹਰ ਦਰਗ ਹੈ ਨਾਨਕ ਊਜਲ ਮੱਥਾ। ਬੜ ਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਜਗ।

नाही मोह है। प्रभ की जोत सगल घट सो है, तनवंता हुए क्या को गर्भ, जा सब किश तिसका दिया दरबै। अत सूरा जे को कहावै, प्रभ की कला बिना कहता वै, जे को होए बह दातार, तिस देन हार जाने गावार। जिस गुर प्रसाद टूटै हों रोग, नानक सो जन सदा अरोग। ज्यों मंदर को थमै थमन, त्यों गुर का शब्द मन है अस्थमन। ज्यों पाखान नाव चढ़ तरै, प्राणी गुर चरण लगत निस्तरै। ज्यों अंधकार दीपक प्रगास, गुर दर्शन देख मन हुए विगास। ज्यों महा उद्यान में मार्ग पावै, त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावै। तिन संतन की बाछो तूर, नानक की हर लोचा पूर। मन मूरख काहे बिललाइयै, पुरब लिखे का लिखिया पाइयै। दुख सुख प्रभ देवन हार, अवर त्याग तू ते सह चितार। जो कश करे सोई सुख मान, भूला काहे फिर है अजान। कौन बस्त आई तेरा संग, लपट रहे ओ रस लोभी पतंग। राम नाम जप हिरदे माहे, नानक पत सेती कर जाहे। जिस वखर कौलैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। तजब मान लेहु मन मोल, राम नाम हिरदे मैं तोल। लाद खेप संत संग चाल, अवर त्याग बिखिया जंजाल। तन तन कह सब कोए, मुख उजल हर दर गह सोए। एहो वापार विरला वापार है, नानक ताके सद बलिहार है। चरण साध के तोए तोए पियो, अर्प साध को अपना जियो। साध की धूर करो इसनान, साधु पर जाइए कुर्बान। साध सेवा बड़ भागी पाइए, साध संग हर कीर्तन गाइए। अनक बिघन ते साधु राखे, हर गुण गाए अमृत रस चाखे। ओट गही संत हदर आया, सर्व सुख नानक ते पाया। मृतक को जीवालन हार, भूखे को देवत आधार। सर्व निदान जाकी दृष्टि माहे, पुरब लिखे का लहना पाहे। सब किश तिसका ओह करना जोग, तिस बिन दूसर हुआ न होग। जप जन सदा सदा दिन रैणी, सब ते ऊच निर्मल ए करनी। कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सो जन निर्मल थिया। जाके मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवै हर प्रभ चीत। भगत भगत सुनिए तिहु लोए, जाके हृदय को होए। सच करनी सचता की रहत, सच हृदय सत मुख कहत। साची दृष्ट साचा आकार, सच वरतै साचा पासार। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सो जन सच समाता। सलोक रूप ना रेख ना रंग किछ, त्रिहुगुण ते प्रभ भिन्न। तिसह बुझाए नानका, जिस होवै सो प्रसन्न। अष्टपदी अविनाशी प्रभ मन मै राख, मानुख की तू प्रीत त्याग। तिसते परै नाही किश कोए, सर्व निरंतर एको सोए। आपे बीना आपे दाना, गहर गंभीर गहीर सुजाना। पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद, कृपा निधान दयाल बख्शांद। साथ तेरे की चरणी पाओ, नानक कह मन एहो अनराओ। मनसा पूर्ण सरना जोग, जो कर पाया सोई होग। हरन भरन जाका नेत्र फोर, तिसका मंत्र ना जाने होर। अनंत रूप मंगल सद जाके, सर्व थोक सुनिए करता कै। राज मैं राज, जोग मैं जोगी, तप मैं तपीसर, गृहस्थ मैं भोगी। त्याए त्याए भगत है सुख पाया, नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया। जाकी लीला की मित नाहे, सगल देव हारे अवगाहे। पिता का जन्म के जाने पूत, सगल पुरोई अपने सूत।

की ओट लेहे मन तने अपना तिन जन देहे जन जन अपना प्रभु पुछाता सो जन सर्व थोक का दाता तिसकी सरन सर्व सुख पाव है तिसकै दर्श सब पाप मिटाव है अबर सियान पसगली शाड़ तिस जन की तू सेवा लाग आवन जान हो भी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सत पुरख जन जाने सतगुर तिसका नाओ तिसकै संग सिख उदरै नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै गुर बचनी हर नाम उचरै सतगुर सिख के बंधन काटै गुर का सिख विकार ते हटै सतगुर सिख को नाम धन दे गुर का सिख वडभागी हे सतगुर सिख का हलत पलत सवारै नानक सतगुर सिख को जी नाल समारै गुर कै गृह सेवक जो रहै गुर की आग्या मन मै सहै आपस को कर काश ना जनावै हर हर नाम हृदय सत त्यावै मन बिच है सतगुर कै पास ते सेवक के कार्य रा सेवा करत हुए ने कामी तिसको होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिसे आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले बीस विश्वे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनक बार गुर को बल जाओ सर्व निदान जी का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म है जन जन्म है पार ब्रह्म एक है आप नहीं कछु भरम सहस सियान पलया न जाइए नानक ऐसा गुर बड भागी पाइए सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गात निर्मल रीत भेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगह गवे सुनकर वचन करन आगाने मन संतोख आत्म पतियाने पूरा गुर अखियो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेख हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भावे तस लय मिलाए जेह बा एक उस्तत अनेक सत पुरख पूर्ण विवेक काहू बोल न पहुंचत प्राणी अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकी कीमत किने न पाई अनक भगत बंदन नित कर है चरण कमल हृदय सिमर है सत बलिहारी सतगुरु अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने एहो हर रस पावै जन कोए अमृत पीवे अमर सो होए उस पुरख का नाही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुणतास आठ पहर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक को दे मोह माया कै संग न लेप मन मह राखै हर हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक भरम मोह दुख तहते नासे तप्त माहे ठाड़ वरताई आनंद भया दुख नाठे भाई जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेसे भौजू का निर्भ होए बसे सगल ब्याद मन ते खै नसे जिसका सातिन कृपा धारी साध संग जपना मुरारी थित पाई चूके भ्रम गवन सुन नानक हर हर जस श्रवन निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला धार जन सगली मोही अपने चरित प्रभाव बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोय सर्व निरंतर एको सोए ओतपूत रव्या रूप रंग भय प्रगास साध कै संग रच रचना अपनी कल धारी अनक बार नानक बलिहारी सलोक साथ न चालै बिन भजन बिख्या सगली शार हर हर नाम कमावना नानक इहु तन सार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवरो पाप समीत बिसारो चरण कमल रिद मह और धारो करन कारण सो प्रभ समर्थ दृढ़ कर गहो नाम अरवथ एहो तन संचो होवो भगवंत संत जना का निर्मल मानते कास राखो मन माहे न सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंट उठता वैसो तन हर सेवा ते पावै जिस सुख को नित बाछे मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करह भली करनी सा शोभा भज हर की सरनी अनको पावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवखत लाए सर्व निदान मैं हर नाम निदान जप नानक दरगह प्रवान मन प्रबुद्ध हर कह नाए दह दिस्तावता बैठाए ताको बिघन न लागे कोए जा कर दह बस हर सोए कलता ती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ भौ बिन सह पूर्ण हुए आस भगत पाए आत्म प्रगास तित कर जाए बस अविनाशी कहो नानक काटी जम फासी तत विचार कह जन साचा जन्म मरै सो काचो काचा आवागमन मिटै प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव यो रतन जन्म का हुए उदार हर हर सिमर प्राण आधार अनको पावना छूटन हारे सिमरत शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन वंचित नानक फल पाए संग न चारस तेरे तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सुतमीत कुटंब हर बनता इन ते कहो तुम कवन सनाथा राज रंग माया विस्तार इन ते कहो कवन छुटकार आस हस्ती रथ सवारी झूठा डंप झूठ पासारी जन दी तस बुझे ना बिगाना ना पिसार नानम नाम विसार नानक पछताना गुर की मत तू ले एने भगत बिना बो डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माए जन्म जन्म के किल बिख जाहे आप जपो अबरा नाम जपावो सुनत कहत रहत गत पावो सार भूत सत हर को नाओ सहज सुभाए नानक गुण गाओ
ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰ ਸਮੈਲ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਹੋਮੈ ਵਿਖ ਫੈਲ ਹੋਏ ਅਚਿੰਤ ਵਸੈ ਸੁਖ ਨਾਲ ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਹ ਸਰਨਾਮ ਸਮਾਲ ਛੜ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲੀ ਮਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਵੈ ਸਚ ਤਨਾ ਹਰ ਪੂੰਜੀ ਸੰਚ ਕਰੋ ਵਿਵਹਾਰ ਈਹਾਂ ਸੁਖ ਦਰਗਹਿ ਜੈਕਾਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਦੇਖ ਕਹੋ ਨਾਨਕ।

पूर्ण पूर रहयो प्रभ व्याप। अनक विस्तार एक ते भये एक अराध पराष्ट गए मन तने अंतर एक प्रभ राता गुर प्रसाद नानक एक जाता श्लोक। फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरणाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए अष्टपदी। जाचक जन जाचे प्रभ दान कर कृपा देव हो हर नाम साजना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें त्यावो। चरण कमल स्यों लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नितनीत एको टेको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार। प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए जन चाख्या से जान त्रिपताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सुपर परे प्रेम रस रंग उपजा चाहो साध कै संग परे सरन आन सब त्याग अंतर प्रगास आनंद निलवलाग बड़पागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रत्ते सुख होए। सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल। सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन पया जन्म मरण दुख भ्रम गया। एच पुनी सरदा सा पूरी रव रहया सतसंग हजूरी जिसका सातन लिया मिलाए नानक भगती नाम समाए। सो क्यों बिसरै जे काल न भान सो क्यों बिसरै जे किया जाने सो क्यों बिसरै जिन सब किश दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया सो क्यों बिसरै जे अगन मैं राखे गुर प्रसाद को बिरला लाखे। सो क्यों बिसरै जे बिखते काढ़ जन्म जन्म का टूटा गाढ़ गुरपुरै तत है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो एहो काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरै नाम जपावो। भक्त पाए तरिय संसार बिन भक्ति तन हुस्ती चार। सर्व कल्याण सुख निध नाम बूढ़त जात पाए विश्राम सकल दुख का होवत नाश नानक नाम जपो गुणतास। उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तने अंतर इही सुहाओ नेत्रो पेख दर्स सुख होए मन बिगसै साध चरण तोए। भगत जना के मन तन रंग विरला को उपावै संग एक वस्त दीजै करमया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व समाए। प्रभ संत दीन दयाल भगत वशल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आदि पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार। जो जो जपै सो होए पुनीत भगत भाए लावै मन हीत हम निर्गुनियार नीच जान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान। सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निम खर के गुण गाए अनक राज भोग भोग बढ़ियाई अन हर के नाम की कथा मन पाई। बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत भली सो करनी सो बातनवंत। हृदय बसे पूर्ण गुरमंत साध संग प्रभ देहो ने

वेद पुराण सिमरत सुने बोबध करो विचार पातत उदाहरण पै हरन सुख सागर निरंकार दाता भुगता देन हार तिस्वन अवर न जाए जो चाह है सोई मिले नानक हर गुण गाए गोबिंद जस गाई है हरनीत मिल भजिए साध संग मेरे मीत रहाओ श्लोक करो वंदना अनकवार सर्व सरण परो हर राय भ्रम कटिए नानक साध संग दुतिया पौ मिटाए पौड़ी दुतिया दुर्मत दूर कर गुरसेवा करनीत राम रतन मन तन बसै तज काम क्रोध लोभ मीत मरण मिटै जीवन मिलै बिनसै सगल कलेस आप तजो गोबिंद भजो पौ भगत प्रवेश लाभ मिला तो टाहर हर दर गए पतवंत राम नाम तन संचवै साच शाह भगवंत उठत बैठत हर भजो साधु संग प्रीत नानक दुर्मत छुट गई पार ब्रह्म बसे चीत श्लोक तीन व्यापै जगत को तुरिया पावै कोय नानक संत निर्मल भये जिन मन वसया सोए पौड़ी तृतीया त्रै गुण विखै फल कब उत्तम कब नीच नरक स्वर्ग भ्रम तो कणो सदा संघारे मीच हरक सोग सहसा संसार हों हों करत बिहाए जिन किए ते सहना जाननी चितवै अनको पाए आद ब्याद उपाद रस कबो न टूटे ताप पार ब्रह्म पूर्ण धनी न बूझे प्रताप मोह भरम बूढ़त कणो महानरक में वास कर कृपा प्रभ राख ले हो नानक तेरी आस श्लोक चतुर सियाणा सुगड़ सोए जिन तजे अभिमान चार पदार्थ अष्ट सिद्ध भज नानक हर नाम पौड़ी चतुरथ चारे वेद सुन सोध्यो तत विचार सर्ब खेम कल्याण निध राम नाम जपसार नरक निवारै दुख हरै टूटै अनक कलेस मी छुटै जमते छुटै हर कीर्तन प्रवेश भौ बिनसै अमृत रसै रंग रते निरंकार दुख दारिद अपवित्रता नासै नाम आधार सुर नर मनोरंजन खोजते सुख सागर गोपाल मन निर्मल मुखुजला होए नानक साधरवाल श्लोक पंच विकार मन में बसे राचे माया संग साध संग होए निर्मला नानक प्रभ के रंग पौड़ी पंचम पंच प्रधान तेज जाने प्रपंच कुसुम बासबो रंग कणो समिथिया बलवंच नह जापै नह बूझिए नह कछ करत विचार स्वाद मोह रस वेद्यो अज्ञान रचियो संसार जन्म मरण बो जोन ब्राह्मण कीने कर्म अनेक रचनहार नह सिमरियो मनना विचार विवेक पाहो भगत भगवान संग माया लिप्त न रंच नानक बिरले पाई है जो ना रचे प्रपंच श्लोक खट शास्त्र ऊचो कह है अंत न पारावार भगत सो है गुण गावते नानक प्रभ के द्वार पौड़ी खष्टम खट शास्त्र कह है सिमृत कथ है अनेक उत्तम ऊचो पार ब्रह्म गुण अंत न जाने सेख नारद मुनजन सुख ब्यास जस गावत गोविंद रस बिद गिदे हरस्यो बिदे भगत रचे भगवंत मोह मान भ्रम बिनस्यो पाई सरन दयाल चरण कमल मन तन बसे दर्शन देख निहाल लाभ मिले तोटा हिरे साध संग लिवलाए खाट खजाना गुण निध हरे नानक नाम ते आए श्लोक संत मंडल हर जस कथ है बोले सत सुभाए नानक मन संतोखी है एकस स्यों लिवलाए पौड़ी सप्तम संचो नाम धन टूट न जाहे भंडार संत संगत मैं पाईए अंत न पारावार आप तजहो गोबिंद भजहो सरण पर हो हर राय दुख रै भव जल तरै मन चिंदिया फल पाए आठ पहर मन हर जपै सफल जन्म परवान अंतर बाहर सदा संग करने हार पछाण सो साजन सो सखा मीत जो हर की मत दे नानक तिस बलिहारण हर हर नाम जपे श्लोक आठ पहर गुण गाई है तजिए अवर जंजाल जम कंकर जोहे न सकई नानक प्रभु दयाल पौड़ी अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निध सगल पदार्थ पूर्ण बुद्ध कबल प्रकाश सदा आनंद निर्मल रीत निरोधर मंत सगल धर्म पवित्र इसनान सब मैं ऊच बसेह ज्ञान हर हर भजन पूरे गुरसंग जप तरिए नानक नाम हर रंग श्लोक नारायण ने सिमरियो मोहयो स्वाद बिकार नानक नाम बिसारिया नरक सुरग अवतार पौड़ी नौवीं नवे शिद्र अपवीत हर नाम ना जपह करत विपरीत पर त्रिया रमै बकै साध निंद करन ना सुनही हर जस बिंद हिर है पर दर्ब उदर कहताई अगना निवरै त्रिसना ना बुझाई हर सेवा बिन ए फल लागे नानक प्रभ बिसरत मर जमह अभागे श्लोक दास दिस खोजत मैं फिरयो जत देखो तत सोए मन बसावै नानका जे पूर्ण कृपा होए पौड़ी दसवीं दसवीं दस द्वार बस कीने मन संतोख नाम जबलीने करनी सुनिए जस गोपाल नैनी पेखत साध दयाल रसना गुण गावै बेअंत मन में चितवै पूर्ण भगवंत हस्त चरण संत टहल कमाई है नानक इहो संजम प्रभ कृपा।

कवन सिद्ध थापी। कवन सम्मोन जो मन मारे मन को मार कहो किस तारे रहाओ। मन अंतर बोले सब कोई मन मारे बिन भक्त न होई। कहो कबीर जो जाने पे ओ मन मधुसूदन त्रिपवन दे ओ गौड़ी कबीर जी। ओए जो दिस अंबर तारे किन ओए चीते चीतन हारी। कहो रे पंडित अंबर का सो लागा बुझे बुझन हर्ष भागा रहाओ। सूरज चंद करह उजियारा सब में पसरिया ब्रह्म पसारा। कहो कबीर जानेगा सो ए हृदय राम मुख रामे होई। गौड़ी कबीर जी वेद की पुत्री सिमृत पाई। सांखल जीवरी लै है आई अपन नगर आप ते वाद्या भोह के फाद काल सरसांदिया रहाओ। कटी न कटे तूट नह जाई सा सापन होए जग कौ खाई। हम दिखत जिन सब जग लूटिया कहो कबीर मैं राम कह छूटिया। गौड़ी कबीर जी दे मुहार लगाम पहरावाओ सगल ताजी न गगन दौरावाओ। अपने विचार सवारी कीजे सहज के पावड़े पग तर लीजे रहाओ। चल रे बैकुंठ तुझे ले तारो हिच है ता प्रेम के चाबक मारो। कहत कबीर भले सवारा बेदक देवते रह निरारा। गौड़ी कबीर जी जेह मुख पांचो अमृत खाए तेह मुख देख

तौ जठर अगन में रहता। लख चौरा सी जोन प्रम आयो अब के छुट के ठौर न ठायो। कहो कबीर पज सारग पानी आवत दिस जात न जानी। गौड़ी पूर्वी स्वर्गवास न बाचिया डरिया न नरक निवास। हूना है सो होई है मन है न कीजे आस। रमैया गुण गाइये जाते पाइये परम निधान। रहाओ क्या जब क्या तब संजमो क्या व्रत क्या स्नान। जब लग जुगत न जानी है पाओ भगत भगवान। संपै देखना हरखिया विप्त देखना रोय। जो संपै तो विप्त है वेद ने रचिया। सो हो एक है कबीर अब जानिया संतन हृदय मझार। सेवक सेवक सो सेवा भले जिह कट बसै मरार। गौड़ी रेमन तेरो कोई नहीं खिंच ले जिन पार। बिरख बसेरो पंख को तैसो एह संसार। राम रस पिया रे जिह रस बिसर गए रस और रहाओ। और मोए क्या रोइया जब आपा थिर ना रहाए। जो उपजै सो बिनस है दुख का।

लोचना भरी लियो सासा उरना भीजे पगना खिसे हर दर्शन की आसा उड़ो ना कागा कारे बेग मलीजे अपने राम प्यारे रहाओ। कह कबीर जीवन पद कारण हर की भगत करीजे एक आधार नाम नारायण रसना राम रविजय राग गौड़ी ग्यारहवीं आस पास कं तुरसी का बिरवा माज बना रस गाऊं रे आकाश रूप देख मोही ग्वारन मोको छोड़ न आओ न जाहु रे तुहे चरण मन लागो सारंग तार सो मिले जोवड भागो रहाओ बृंदा बिंद्रा बन मन हरन मनोहर कृष्ण चरावत गाऊ रे जाका ठाकुर तुही सारंग तार मोहे कबीरा नाऊ रे।

0: मुख लोग निंदा हो निंदा जन को खरी प्यारी निंदा जन को खरी प्यारी निंदा बाप निंदा महतारी रहाओ निंदा होए ता बैकुंठ जाइए नाम पदार्थ मन है बसाइए हृदय सोध जाओ निंदा होए हमरे कपड़े निंदक तोहे निंदा करे सो हमरा मीत निंदक माँ ही हमारा चीत निंदक सो जो निंदा हो रहे हमरा जीवन निंदक लो रहे निंदा हमरी प्रेम प्यार निंदा हमरा करे उधार जान कबीर हो निंदा सार निंदक डूबा हम उतरे पार राजा राम तू ऐसा
1: निरपो तरन तारन राम राया रहाओ जब अम होते तब तुम नाही अब तुम हो हम नाही अब हम तुम एक पए है एक है देखत मन पति आही जब बुद्ध होती तब बल कैसा अब बुद्ध बल ना खटाई कह कबीर बुद्ध हर लई मेरी बुद्ध बदली सिद्ध पाई गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी बांधी वस्त अनूप बीच पाई कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे करते बार न लाई आब मन जागत रहो रे पाई गाफल होए कह जन्म गवायो चोर मुसै कर जाई रहाओ पंच पहरुआ दर मह रहते तिनका नहीं पतियारा चेत सुचेत चेत होए रहो तौ लै परगास उजार नौ कर देख जो कामन भूली बस्त अनूप न पाई कहत कबीर नवै कर मूसै दसवें तत समाई गौड़ी